नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा

अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड काम इतनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विथ रेनबो फन डे रेनबो फन डे
2: रेनबो फन डे रेनबो फन डे
1: म्यूजिकल साथ रियल लाइफ बात सिनेमा नाटक भटकंती खास स्टार्टअप योर डे विथ रेनबो फन डे रेनबो फन डे
2: रेनबो फन डे।
3: बातमीपत्रानंतर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत या वाहिनीवर FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्झवर रेनबो फंडे या कार्यक्रमात। आपल्यासोबत पुन्हा एकदा मी रश्मी वारंग। आपणा सर्वांना रश्मीचा सप्रेम नमस्कार।

0: sky. What's up in life? Man more calm. Ethan aram. So start up your day with Rainbow Fun Day.
1: Namaskar. Aakashwani se samachar prabhat ke saath main Jaya Bharati. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
2: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों

0: लोगों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हरदा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केंद भी है, फल उल डर है, उससे हम लोग गांव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
1: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ते ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 8:40 हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम मस्त मुंबई और ट्यूसडे की ब्राइट मॉर्निंग और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान. तो चलिए आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे से गीत से, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

जी हाँ मुंबई सिटी, मुझे कितना प्यार है तुमसे। मैं बता नहीं सकता दोस्तों कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, 8:53 और 40 सेकंड आपका अपना चैनल एफएम रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मस्त मुंबई, और मैं आपके साथ आपका आरजे रविन। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में हंसना कितना ज़रूरी है, और हंसना हम सब के दिल दिमाग और सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। आजकल अब तो मेडिकल साइंस ने भी साबित कर दिया है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी हाँ, हंसी दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, सबसे बेहतरीन दवा है, और जिसमें कुछ खर्च भी नहीं होता। सबसे खास बात यह है कि ये फ्री में अवेलेबल है। आप हंस सकते हैं, अच्छी अच्छी बातों पर हंस सकते हैं और दूसरों को भी हंसा सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग किस्से शेयर कर सकते हैं ताकि हम खुल के हंस सकें और दूसरों को भी हंसा सकें। लेकिन आज जब हंसी मजाक की बात हो रही है, हंसने की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कमाल के शानदार कॉमेडियन का, क्या कहते हैं कि उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। जी हाँ, और इनका नाम था महमूद अली साहब। जी हाँ, मोहब्बत से प्यार से लोग इन्हें भाईजान कहा करते थे, महमूद अली साहब को। 1943 में फिल्म किस्मत से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। आज ही के दिन यानी 29 सितंबर 1932 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। तो चलिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमें बताएं कि हास्य अभिनेता महमूद की एक एक्टर के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर आखिरी फिल्म कौन सी थी। जी हाँ, महमूद अली साहब की यानी भाईजान की आखिरी फिल्म, आखिरी हिंदी फिल्म जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी, वो कौन सी थी, उसका नाम आपको बताना है। जल्दी कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए जवाब दें। जिनके जवाब पहले आएंगे उन सभी के नाम मैं ऑन एयर लेने वाला हूँ।

तो सुनते हैं अगला गीत, और ये गीत हम महमूद साहब को, भाईजान को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर डेडिकेट करते हैं। बहुत ही फनी, शरारती, नॉटी गाना।

ख्याला चंदाना, ये सोला साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना। हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या।

ताले ताग ढुम ताग ताले ताग ढुम ताग झाला आंघो ताग ढग ताग ताजे गेन ताग नाक ताग ढुम ताग नाक नाक ढुम ताग नाक नाक ढुम ताग नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकू दारी दाबू तारी गेटे ताले झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकू दारी दाबू तारी गेटे झम तारी झग तारी झग नाक ताक ताजन ताजन ताजन ताज झम तारी झग तारी झाले

जी हाँ दोस्तों, महमूद साहब का कुछ ऐसा ही अंदाज हुआ करता था। काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, भाईजान को यानी महमूद अली साहब को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। एक ऐसा महान हास्य कलाकार जो इस दुनिया में आया, हमेशा लोगों को हंसाता रहा, लोगों की आंखों के आंसू को दूर करता रहा और दिल को खुशियां देता रहा। ऐसे कलाकार कभी कभी पैदा होते हैं, आपने भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। और मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप व्हाट्सएप के ज़रिए जल्दी से जल्दी दें। एनीवे, अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत

आज की मुलाकात बस इतनी। दोस्तों, हमारी मुलाकात का समय तो अभी काफ़ी बाकी है, अभी तो हमारी मुलाकात ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई है। एनीवे, बहुत ही प्यारा गीत था और लता जी और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ें थी। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं कि जहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, और हमें ये सब साबित करने के लिए कि मेरा नाम ये है, कोई ना कोई आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। हिंदी में कह सकते हैं कि परिचय पत्र दिखाना पड़ता है, यानी हमें अपनी पहचान देने के लिए, अपने नाम को ठीक तरह से बताने के लिए आईडी कार्ड के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट, ये बहुत सारे ऐसे आईडी कार्ड्स हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, वैलिड हैं, और इनके बिना हमारी ज़िंदगी ठीक से चल ही नहीं सकती।

ये सभी आईडी कार्ड्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं और ये सभी आईडी कार्ड्स भारत सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। हमारे देश का सिस्टम सही रहे, ठीक रहे और ठीक तरह से चल पाए, इस सब के लिए ये सब जरूरी भी है। तो चलिए सुनते रहिए, आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर आप आईडी कार्ड्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हमसे कह सकते हैं। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत और लता जी की आवाज़ है।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:51 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। तो बात कर रहे थे आईडी कार्ड्स की। जैसे हमारे कोई लिसनर है, जैसे प्रकाश शिंदे साहब हैं, मान लो कहीं पर गए हैं और वो कहें मेरा नाम प्रकाश शिंदे है, लेकिन सामने वाला कहेगा भाई कोई आईडी प्रूफ दिखाइए, हम कैसे मान लें आप प्रकाश शिंदे हैं? हाँ, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ऐसे मौके बहुत आते हैं और आप सोच सकते हैं कि दुनिया कितनी बदल गई। एक ऐसा वक्त था कि इंसान अपना नाम बताता था तो सामने वाला मान लेता था हाँ आप यही होंगे, लेकिन आज ऐसे बहुत सारे चांसेस रहते हैं, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आईडी प्रूफ के बिना कोई ये मानेगा ही नहीं कि आप ये हैं और आपका ये नाम है। और अगर मान भी लेगा तो कहेगा भाई चलिए हमने मान लिया आप प्रकाश शिंदे हैं, लेकिन आईडी प्रूफ तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो आज आईडी प्रूफ की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं और चलते हैं हम आज से काफ़ी पहले, लगभग 1940 के आसपास, यानी 85 ईयर्स पहले पहुंच गए हम। तब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1940 के दशक में राशन कार्ड की शुरुआत की गई थी और ये समय अंग्रेज़ों का था और इसका चलन अंग्रेज़ों ने ही किया था। बहुत जल्दी ये एक बहुत खास डॉक्यूमेंट बन गया, एक बहुत ऑथेंटिक प्रूफ बन गया, प्रमाण पत्र बन गया। इसमें इंसान का नाम होता था, साथ ही साथ उसके घर का पता भी होता था। और आज़ादी के समय यानी आज़ादी के आसपास भी ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता था, बहुत बड़ा आईडी प्रूफ माना जाता था। और इसके अलावा एक और आईडी प्रूफ था, वो था ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट। जी हाँ, यानी दूसरे देशों में जाने वाले लोगों को ये आईडी प्रूफ इशू किया जाता था, ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट। लेकिन 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने इस पासपोर्ट को रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। यानी तब हमारे पास सिर्फ एक ही आईडी प्रूफ था, वो था राशन कार्ड। आज भी हमारे घरों में बहुत सारे लोगों के पास अंदर कहीं कबर्ड में एक राशन कार्ड रखा होगा। अलग अलग रंगों के राशन कार्ड होते हैं लेकिन अब उसका उतना इस्तेमाल नहीं होता है। एनीवे, अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Good morning, you are listening to the first update of the day from the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. I am Prerna Sharma and alongside me is Modita. India has already been in action across several disciplines this morning with some important results coming in. Let's take a look at the latest developments and bring you up to the speed with all the action so far. Modita, over to you.
2: Shukriya Prerna. भारत ने आज शानदार शुरुआत की है। ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत

0: और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। एक अच्छी खबर नीरू ढांडा ने और दी है कि वो व्यक्तिगत फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। 27 निशानेबाजों के व्यक्तिगत क्वालिफाइंग राउंड में नीरू पहले स्थान पर रही है। आशिमा ने 16वां जबकि मनीषा ने 23वां स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों में शपथ भारद्वाज भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। 117 अंकों के साथ शपथ भारद्वाज 8वें स्थान पर रहे। वहीं पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में भारतीय टीम 339 अंकों के साथ छठे नंबर पर रही। अगली खबर हमारे पास तीरंदाजी से है। प्रेरणा, तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का मुकाबला भूटान के लैम दोरजी से होगा।
1: In track cycling, the Indian women's team sprint trio of Celestina, Sarita Kumari, Keerta Rangaswamy, Chikka finished 6th in qualification, clocking 50.414 seconds. They were 3.742 seconds behind leaders China. The qualification round determines the seeding for the next stage. With 6th place set to the face 4th place, India will therefore take on Chinese Taipei in Heat 1 at the 11:30 this morning. The Indian men also competed in the team sprint qualification. Rohit Singh, David Beckham and Ronaldo Singh recorded the seventh fastest time among the 8 teams in the field. They will now look to improve their performance as the competition moves into its next stage. In Kurush, Vipin's Kumar campaign in the men's 66kg category came to an end in the round of 16. He lost 0-3 to South Korea's Yoon Hyun Soo. The available scoring indicates that Vipin conceded 2 points on a chala, a basic throwing technique in Kurush, while the match feed also credits him with a throw. This results bring his individual campaign at the games to a close.
0: और वही भारतीय महिला स्क्वाश टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, वहीं अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में शिकस्त दी। जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच जीतकर ईरान के खिलाफ 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। बता दें कि तन्वी खन्ना की जो ओपोनेंट थी ईरान की नरगिस सुल्तानी, वो खेल के बीच में ही रिटायर हो गई थी। और पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: Now gliding through the slalom gates, the Canon and slalom with the speed and focus, H. Kewat logged in an 8th place finish at 118.22 seconds, closely followed by P.S. Rathod claiming 10th with a time of 127.70 seconds. P. Jagta battled through the course to secure 7th place in 224.20 seconds, while R. Sen wrapped up the run in 9th place at 342.72 seconds, pushing through to the finish line. S. Chahan rounded out the Indian lineup in 11th place with a time of 344.87 seconds.
0: और एक खबर क्रिकेट की हम जरूर देना चाहेंगे कि सेमीफाइनल में अब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। नेपाल और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया है, बल्कि चारों क्वार्टर फाइनल मैचेस बारिश की वजह से रद्द हो गए हैं। ऐसे में बेहतर रैंकिंग के आधार पर श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। और कल भारत और अफगानिस्तान का मैच भी बारिश के कारण नहीं हो सका था। रिजर्व डे नहीं होने के कारण भारत ने भी बेहतर रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था।
1: एंड लुकिंग एट द मेडल टैली, इंडिया होल्ड्स द 12th पोजीशन ऑन द मेडल टैली विद अ टोटल ऑफ 46 मेडल्स, इन विच मुतिता फोरा गोल्ड, 21 सिल्वर एंड 21 आर ब्रॉन्ज।
0: तो इसके साथ ही मुदित और प्रेरणा को दीजिए इजाजत। ठीक

जी हाँ मुंबई, 9:39 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत में पहले आम चुनाव हुए थे तब लोगों के पास किसी भी तरह का फोटो आईडी कार्ड नहीं था। जी हाँ, कोई भी ऐसा आईडी कार्ड नहीं था जिस पर फोटो लगा हुआ हो वोट डालने के लिए। और अभी आप जानते हैं कि सर स्कीम चल रही है और किस तरह से इस पर बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। और 1993 के बाद मतदाता पहचान पत्र को लागू किया गया। आज पासपोर्ट भी एक बहुत ही खास आईडी कार्ड माना जाता है और इसे काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं बनता है। 1954 में हिंदुस्तान के 5 बड़े शहरों में पासपोर्ट ऑफिस बनाए गए। ये शहर थे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नागपुर। और 1967 में पासपोर्ट पर एक नया कानून आया, नया अधिनियम बना, जिसके बाद भारतीयों को काफ़ी आसानी से पासपोर्ट मिलने लगे। और दोस्तों, साल था 1972 जब भारत सरकार ने पहली बार एक खास तरह का कार्ड जारी किया जिसे कहते हैं पैन कार्ड। जी हाँ, परमानेंट अकाउंट नंबर। और आज ये लगभग हम सभी के पास होता है।

और बैंक में जब भी अकाउंट खोलना है तो इसके बिना हम अकाउंट नहीं खोल सकते, प्रॉब्लम होती है। कोई बड़ा मनी ट्रांजैक्शन करना है तो भी पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। 1976 में सभी करदाताओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। हमारे जो लिसनर दीपा पालकर जी ने और राकेश माथुर जी जो पुणे से, उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, फर्जी आधार कार्ड या दूसरे कार्ड्स बना लेते हैं और फिर तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, फ्रॉड्स करते हैं। यानी तकनीक का जहां फ़ायदा है वहां कहीं कहीं इसके नुकसान भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सब सावधान रहें, अलर्ट रहें, होशियार रहें। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, गौर से सुनिएगा।

9:50 हो चुके हैं, मुंबई सिटी, बात कर रहे थे आईडी कार्ड्स की। जी हाँ, 2010 में भारत सरकार ने आधार कार्ड जारी करना शुरू किया। जी हाँ, कह सकते हैं कि आज ये हमारे देश में एक सबसे ज़रूरी पहचान पत्र है। आज आधार कार्ड के बिना हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं पाएगी। एक आईडी कार्ड के तौर पर हमें इसे बहुत जगह दोस्तों दिखाना पड़ता है। और एक ख़ास बात है कि आईडी कार्ड के लिए आखिर आधार शब्द

का इस्तेमाल क्यों किया गया? जी हाँ, उसे आधार कार्ड क्यों कहा गया? मतलब साफ है कि आधार कार्ड का नंबर एक ऐसा नंबर जो आधार कार्ड होल्डर यानी उस इंसान की जिंदगी के लिए एक आधार के तौर पर, एक बेस के तौर पर, एक फाउंडेशन के तौर पर काम कर सके, एक ऐसा अहम खास नंबर जो उसकी जिंदगी की पहचान बन सके, इसलिए इसे आधार नाम

ने 29 सितंबर 2010 को भारत सरकार ने पहला आधार कार्ड जारी किया था। जी हाँ, 29 सितंबर 2010 दिन आज ही का था। और भील जनजाति की एक महिला जिनका नाम है रंजना सोनावने, इनका निवास स्थान है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का एक गांव तंभेली। जी हाँ, गांव का नाम है तंभेली। इस गांव में रहती हैं और इन्हें भारत का पहला आधार कार्ड जारी किया गया था और इसे जारी किया था उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने। तो इसलिए आज इसकी चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि आज हमारा शीर्षक भी था, टाइटल भी था, कल आज और कल। जी हाँ, यानी पहले ऐसे आरडी कार्ड्स थे, फिर ऐसे हुए और अब ऐसे हो रहे हैं और आने वाले समय में न जाने क्या क्या होगा। तो जैसा कि मैंने सवाल पूछा था कि भाई जान की यानी महमूद अली साहब की आखिरी फिल्म कौन सी थी, हमारे एक लिसनर हैं रंजन हजारीबाग झारखंड से, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम है घर बाजार। दीपा पलकर जी ने पहले कुछ और जवाब दिया, फिर उसे करेक्ट किया और फिर बताया घर बाजार। और हमारे कई सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने दुश्मन दुनिया का अंदाज अपना अपना ये जवाब दिए, ये सभी जवाब गलत हैं। अंधेरी से तनुजा शर्मा जी का जवाब भी बिल्कुल सही है और उन्होंने बहुत जल्दी यानी 2-3 मिनट के अंदर ही आंसर दे दिया था। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, रफ़ी साहब की आवाज़, और आप सभी को मैं समर्पित करता हूँ। गौर से सुनिएगा, आपके लिए।

जी हाँ मुंबई सिटी, जान तुम पर ही दिया करते हैं, नाम तुम्हारा ही लिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम मस्त मुंबई और आज हमने आईडी कार्ड्स के बारे में चर्चा की और उनकी चर्चा क्यों की इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि आज आईडी कार्ड्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज हमारे देश में भारत सरकार ने पहला आईडी कार्ड यानी पहला आधार कार्ड इशू किया था, जारी किया था। और दोस्तों अगला स्लॉट होगा नमस्ते भारत और आज हमारा टाइटल है भारत हमको जान से प्यारा है। जी हाँ दोस्तों, भारत हमको जान से प्यारा है और एक खास घटना की चर्चा की जाएगी, खास इंसिडेंट्स की चर्चा की जाएगी। एनी गेस, अगर आप समझते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। एक बहुत ही खास दिन है आज का दोस्तों, जो हमें हमारे देश की याद दिलाता रहेगा, देश के वीरों की याद दिलाता रहेगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, थोड़ा सा भी क्लू है कि वो कौन सी घटना है जिसकी चर्चा मैं अगले स्लॉट में करने वाला हूँ, तो व्हाट्सएप के ज़रिए जल्दी से जल्दी बताएं। जिनके जवाब जल्दी आएंगे उन सभी के नाम मैं ऑन एयर लूँगा, उन सभी लिसनर्स के नाम। तो जल्दी से जल्दी बताएं आज ऐसी कौन सी घटना है जिसकी चर्चा भारत हमको जान से प्यारा में की जा सकती है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 10:23 हो चुके हैं. आप सुनेंगे समाचार. गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया. सम्मेलन में आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्यवाही, आंतरिक क्षमताओं के एकीकरण और मानवाधिकार जैसे विषयों पर चर्चा की गई. सर्वोच्च न्यायालय ने मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों के समान त्रिभाषा नीति से छूट देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को ये निर्देश दिया है. फिक्की फ्रेम्स 2026 आज मुंबई में शुरू हो रहा है. केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग विषयों पर चर्चा

की जाएगी। अंत में खेल। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।

10:02 गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत। और आज हमारा टाइटल है भारत हमको जान से प्यारा है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि जान से भी ज्यादा प्यारा है। और आज एक खास घटना की चर्चा करने वाला हूं। अगर आप उस घटना के बारे में कुछ जानते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हमें शेयर कर सकते हैं। जिनके जवाब जल्दी से जल्दी आएंगे उन्हें उन सभी लिसनर्स के नाम मैं ऑन एयर शेयर करूंगा। सुनते रहिए एफएम रेनबो

बाकी से प्ले करना चाहिए। आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाज़ें थी, और ऐसे बहुत कम गाने हैं जिनमें मुबारक बेगम साहिबा की आवाज़ सुनने को मिलती है, और अलग अंदाज अलग शैली है उनकी। तो चलिए आज की चर्चा पर आते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आज हमारा टाइटल है भारत हमको जान से प्यारा है, तो इस टाइटल के अंतर्गत हम किस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं आज के इस स्लॉट में। तो हमारे चार लिसनर्स ने जो जवाब दिए हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। राकेश माथुर जी ने पुणे से लिखा है कि आज रविन वर्ल्ड हार्ट डे है, आपने बिल्कुल सही कहा। और दीपा पालकर जी ने लिखा है कि आज के दिन बिरला तारांगण की शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। और पंकज माहौर जी लिखते हैं कि आज के दिन मातंगिनी हाजरा जी का बलिदान दिवस है। लेकिन दोस्तों, जो मैं सुनना चाहता था, जो आज की एक खास घटना है जिसकी चर्चा इस स्लॉट में हम करने वाले हैं, जो हमें हमारे देश के वीरों की, शहीदों की याद दिलाती है, जी हाँ, वो है सर्जिकल स्ट्राइक। आज के दिन यानी 28 सितंबर की रात को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और 29 सितंबर की सुबह पूरे देश को इसकी जानकारी मिली थी कि भारत के जाबाजों ने क्या किया है, आतंकवादियों के खिलाफ कितनी सख्त और कितनी बड़ी कार्यवाही की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो चलिए अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है।

जी हाँ दोस्तों, हम सब हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हमारे मुल्क से, हमारे वतन से बेहद मोहब्बत है, प्यार है। हमारे देश की सरहदों पर हमारी आर्मी हमेशा तैयार रहती है। जब भी कोई दुश्मन भारत की तरफ आंखें उठाकर देखता है तो हमारे देश की सेना उसे कड़ा जवाब देती है। हमारे देश के जवान हर समय हर लम्हा मुस्तैद रहते हैं। 29 सितंबर का दिन यानी आज का दिन बहुत ही खास है और मैं बताना चाहता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी ये क्यों की गई थी। 18 सितंबर 2016 का दिन था, जम्मू और कश्मीर में एक जगह है उरी, यहां पर आर्मी का एक हेड ऑफिस है दोस्तों। इस हेड ऑफिस पर आतंकवादियों ने एक बहुत ही कायराना हमला किया था जिसमें हमारे देश के 19 जवान शहीद हो गए थे और लगभग 19 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। यह हमला करीब सुबह 5:30 पर किया गया था। कह सकते हैं कि एक बहुत घिनौना काम था या एक धोखा था, एक षड्यंत्र था। सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने आतंकवादियों को घेर लिया और इस हमले का कड़ा जवाब दिया गया था और चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया था। लेकिन हमारे देश के 19 मासूम जवान शहीद हो गए जिनकी जान धोखे से ली गई थी। पूरे देश में मातम की लहर दौड़ गई थी। हर हिंदुस्तानी के दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा था, बगावत थी कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, बस अब बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता जी की आवाज़।

0: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। 10:29 और 23 सेकंड हो चुके हैं। बात कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, जो एक बहुत ही अहम, बहुत ही खास घटना है। लेकिन 5 मिनट का हम एक ब्रेक लेंगे और आप सुन सकेंगे एशियन गेम्स का लाइव अपडेट। खेलों का भी हमारी जिंदगी में अपना महत्व है, तो आइए प्रतीक्षा करते हैं एशियन गेम्स के लाइव अपडेट की और ठीक 5 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत के स्लॉट भारत हमको जान से प्यारा में।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Good morning once again and welcome back to the second update of the day from the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. I am Prerna Sharma and I have Mudita with me. The morning has already brought some interesting developments for India with the silver medal, and we'll begin this update with the latest again from the cycling track. Women pursued cycling. The Indian women's team pursued quartet of Harshita Jhakar, Pooja Dandole, Meenakshi and Swasti Singh, finished 5th in the qualification round. The result has taken them through to the head-to-head heats, where they will now look to build on their qualification performance and continue their campaign. So, Mudita, what is there from the shooting range for our listeners?
3: Prerna, जैसा कि आपने बताया कि आज सुबह ही ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है, वहीं ट्रैप शूटिंग में ही नीरू ढांडा ने व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और अब मेडल के लिए उनका मुकाबला जारी है। काफी उम्मीदें हैं नीरू से, क्योंकि इसके पहले के राउंड में वो शीर्ष पर रही थीं।
2: And now coming to sports climbing, India's Jogga Purti has officially qualified for the knockout finals in the women's speed climbing event. She clocked a time of 7.28 seconds to secure the 9th position overall, with the official cue next to her name.

0: confirming her spot in the next round. At the top of the leaderboard was China's El Deng, leads the standings with the game's record time of 6.23 seconds, followed closely by South Korea's Jae Jeong at 6.25 seconds.
1: तीरंदाजी में जहां सुबह धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने हमें अच्छी खबरें दी थी, तो वहीं अब रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल में राउंड ऑफ 16 में कुमकुम अनिल महूद और कीर्ति शर्मा क्वालिफाई करके अगले राउंड में पहुंच गई हैं, यानी राउंड ऑफ 8 में प्रवेश कर गई हैं। कुमकुम ने मंगोलिया की बिशिंदी उरान तुलंगलाक को, वहीं कीर्ति ने वियतनाम की हुआंग फुआंग थाओ को हराया। राउंड ऑफ 8 के मुकाबले जारी हैं।
0: And Mudita, if looking back at the earlier action from the Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official games debut and a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals heat 4, India's Kishore Kumar Annabarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended in India's historic run just shy of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: और अब बात टेनिस की, जहां मेंस सिंगल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और इंडोनेशिया के गुनावन त्रिसमुवंत्रा के बीच मुकाबला जारी है। फिलहाल डी सुरेश लीड कर रहे हैं 7-5 और दूसरा सेट बराबरी पे चल रहा है। उम्मीद है कि वो भी यहाँ से अगले राउंड में प्रवेश करेंगे। वहीं टेनिस में ही कल जो सुमित नागल का मैच बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था, उस मैच में पहले सेट में नागल 3-2 से आगे चल रहे थे, लेकिन बारिश के कारण उस मैच को रोकना पड़ा था, तो ये मैच आज फिर से होगा। टेनिस में ही पुरुष डबल्स के मुकाबले भी आज शेड्यूल हैं। युकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी कजाकिस्तान के बेबिट जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी का सामना करेगी। अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी का मुकाबला नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी से होगा। वहीं मिश्रित युगल में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के क्यारन थॉमसन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा।
0: And there is plenty of Indian action to look forward to as the athletics program reaches its final day with 9 finals featuring Indian athletes or teams. Dev Kumar Meen and Kuldeep Kumar will compete in the men's pole vault final, while Pooja and Supriya Basavaraju will contest in the women's high jump final. In the men's 5000 meters final, double medalist Gulveer Singh and Avinash Sable will be in action, while Anushka Yadav and Tanya Chaudhary will compete in the women's hammer throw final. Medals will also be decided in the men's and women's 800 meters, as well as the men's women's and mixed 4x400 and 4x100 meter relay finals. And looking at the medal position, India is currently holding 12th place on the overall medal tally. The Indian contingent has secured a total of 46 medals, comprising 4 gold, 21 silver and 21 bronze medals. Talking about the top 3 leaders, in first place we have China leading the standings by a huge margin with 234 total medals, 135 gold, 53 silver and 46 bronze. Second place Japan and third place South Korea.
1: और वहीं आज आगे जिन मुकाबलों पे हमारी नजर रहेगी प्रेरणा, उसमें बॉक्सिंग के मुकाबले बहुत अहम है, क्योंकि वहां मेडल्स हम पक्के कर चुके हैं, मेडल का रंग बदलना बाकी है। वहां वेमेन 65 केजी में परवीन का मुकाबला होगा चाइना की ली शू से, जो अभी शुरू होने वाला होगा। और इसके बाद पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश का मुकाबला होगा फजलुद्दीन एर्किनबोयेव से और नरेंद्र का मुकाबला होगा एबेक ओराल बे से, जो कि कजाकिस्तान के हैं और ये 90 किलोग्राम के भार वर्ग में होगा। तो इसके साथ ही ये अपडेट खत्म करने का समय हो गया है। हमें दीजिए इजाजत, ठीक एक घंटे बाद हम फिर से हाजिर होंगे नई और ताजा अपडेट्स के साथ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:41 और 23 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और आज हमारा टाइटल है भारत हमको जान से प्यारा है। इस शो में आपके साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे

अरविंद चौहान। तो दोस्तों, बात कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। 18 सितंबर 2016 को आतंकवादियों ने भारतीय आर्मी के हेड ऑफिस पर जो कायराना हमला किया था, भारतीय आर्मी ने फैसला कर लिया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सारी जानकारियां इकट्ठी की गई, पूरा होमवर्क किया गया, पूरी योजना बनाई गई और 10 दिन का समय इसमें लिया गया। ठीक 10 दिन के बाद यानी 28 सितंबर की रात को लगभग 12:30 बजे भारतीय आर्मी के 150 जवान, सलाम है आप सबको। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आर्मी के 150 जवान LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके रात के अंधेरे में पाक अधिकृत कश्मीर में घुस गए और आतंकवादियों के कैंप्स को बुरी तरह से तबाह कर दिया, उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। इसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। लगभग 4 घंटे के इस ऑपरेशन को पूरा करके भारतीय आर्मी के सभी जवान, जी हाँ ये खास बात है, भारतीय आर्मी के सभी जवान सुरक्षित वापस आ गए अपने देश की सीमा में। दोस्तों, ऐसा है इंडियन आर्मी का जलवा। वाकई भारतीय सेना के जवानों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि सलाम। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, लता जी की आवाज़।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:48 और 11 सेकंड और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम नमस्ते भारत और इस शो में आपके साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान बात कर रहे थे दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि 28 सितंबर की रात को 12 यानी 12:30 बजे के बाद भारतीय आर्मी के जाबाज सिपाही एलओसी पार करके चले गए और आतंकवादियों के कैंप्स को तबाह कर दिया। 29 सितंबर 2016 की सुबह इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूरे देश को पता चला, पूरी दुनिया को पता चला, हर हिंदुस्तानी को पता चला और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, गर्व था, गौरव था कि भारतीय आर्मी ने कमाल का काम किया, आतंकवादियों को इसी तरह से करारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस घटना पर जनवरी 2019 में एक फिल्म भी आई थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये फिल्म आर्मी द्वारा सितंबर 2016 में जो ऑपरेशन किया गया था इसी पर आधारित थी। इस फिल्म के लेखक निर्देशक थे आदित्य धर, विकी कौशल, यामी गौतम इसके मुख्य कलाकार थे। यह फिल्म बहुत पसंद की गई थी। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का और फिल्म के निर्देशक आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों, आज हम भारतीय आर्मी के जाबाज सिपाहियों को कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्हें भी जो 16 सितंबर की घटना में शहीद हो गए थे, और उन्हें भी नमन करते हैं जिन्होंने उस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और बदला लिया। आप सभी को कोटि कोटि नमन। आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से पूरा देश सुरक्षित है और हमेशा यूं ही सुरक्षित रहेगा। तो इसी के साथ मैं आरजे रविन चौहान आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए एफएम रेनबो। आज हम गोल्डन एरा के गाने सुन रहे हैं, तो कुछ गाने बैक टू बैक मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे नमिता, आपके साथ। लीजिए पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, ऑपरेशनल और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएँ लागू की जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल मुंबई में भारत यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद श्री गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब $100 अरब हो गया है। और समाचारों के अंत में, जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, ब्रेक फ्री प्रोग्राम चालू हो जाता है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए पेश है आज के ब्रेक फ्री प्रोग्राम में विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष में डॉक्टर श्रीपाल जैन से आरजे ममता की बातचीत। ये बातचीत हम 2 भागों में आपको सुनवाएंगे और 11:30 बजे बीच में 5 मिनट के लिए एशियन गेम्स के अपडेट्स आप सुन सकेंगे। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो पर। आइए सुनते हैं वर्ल्ड हार्ट डे पर ये साक्षात्कार।
2: मॉर्निंग, नमस्कार। 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ और आज हमारे साथ हैं कोई ऐसे जो आपका ही नहीं आपके बच्चों के दिल का भी ख्याल रखते हैं। भाई वर्ल्ड हार्ट डे है और

0: इस उपलक्ष्य में हम किसी दिल के डॉक्टर से बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका और आपके अपनों के दिल का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीपाल जैन, जो पिछले 17 सालों से वाडिया हॉस्पिटल में बतौर फीटल एंड पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं और कई सारे बच्चों को जीवन दान दे रहे हैं उनके दिल का ख्याल रखकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद ममता जी, नमस्कार।
0: श्रीपाल जी, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो सबसे पहले तो आपको आज के इस खास दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
0: और सबसे पहला और सबसे अहम सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये कि क्या सच में दिल की बीमारी के बारे में बचपन में ही पैदा होने से पहले पता लगाया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल, जैसे कि पता होगा आप लोगों को कि बच्चों में दिल की बीमारी जो है वो बहुत कॉमन है। 100 में से 1 बच्चे को हम लोग इंसिडेंस बोलते हैं ये चीज़ को, कि 100 में से 1 बच्चे को दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है। और फीटल इकोकार्डियोग्राफी ये एक तरीका है, एक जरिया है, जिसके ज़रिए हम लोग बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ के गर्भ में उसके हार्ट के प्रॉब्लम का निदान किया जा सकता है। सो डेफिनेटली आज की तारीख में ये कहना कि बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चला है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम लोगों ने जांच की है तो बेशक इसका पता हम लोग पैदा होने के पहले ही पता कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर, आपको क्या लगता है अब तक कितने लोगों के बारे में इस बात को लेकर जानकारी है कि ऐसा कुछ मौजूद है? क्योंकि अक्सर कई बार बच्चे पैदा होने के बाद ही पेरेंट्स को बताया जाता है कि बच्चे में ये डिफॉर्मिटी है या उनका हार्ट डेवलप नहीं हुआ है।
1: नहीं, बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि ये इस बीमारी के बारे में जागरूकता अभी भी कॉमन लोगों में बहुत ज़्यादा कम है। जैसे आज की सवेरे की बात करता हूँ मैं, कि अब एक बच्चे को मैंने चेक किया है तो उसको हार्ट की बीमारी पता चली है और माँ बाप को पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम है, और उनको एक तरह का शौक था कि बच्चों में भी हार्ट की बीमारी होती है करके। तो ये अनकॉमन नहीं है कि माँ बाप को कुछ आइडिया नहीं है या कॉमन लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है। तो एज अ डॉक्टर और खास करके आज के दिनों में हम लोग ये चीज़ों की जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि कॉमन लोगों में इस बात की जागरूकता बढ़ जाए कि बच्चों में भी हार्ट की बीमारियां हो सकती है।
0: और आज इस शो के जरिए हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम लोगों में जागरूकता बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि वक्त है खूबसूरत से गीत का। तो आपके दिल का ख्याल रखते हुए हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत। आप तैयार हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: तो चलिए सुनते हैं ये।

0: वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है फीटल एंड पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीपाल जैन। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चे के पैदा होने से पहले ही पता लगाया जा सकता है कि उसके हार्ट में ये दिक्कत है, और क्या प्रोसीजर उसके लिए हमें फॉलो करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि वो चीज रेक्टिफाई हो जाए।
1: राइट, लगभग 90% हार्ट की बीमारियां जो बच्चों में हो सकती है उसको हम लोग पैदा होने के पहले ही पता लगाया जा सकता है। दो चीजें होती है जिनको हम लोग साधारण भाषा में होल इन द हार्ट या हृदय में छिद्र होना, तो ये दो होल होते हैं जो हर बच्चे को जब बच्चा माँ के पेट में है उनको रहने हैं, और जिनकी जरूरत नहीं होने की वजह से कुदरती तरीके से पैदा होने के बाद वो होल को बंद हो जाना होता है। तो ये दो होल की अगर हम लोग बात छोड़ दें तो बाकी सारे लगभग हार्ट की जो प्रॉब्लम है उनको हम लोग पैदा होने के पहले उनका हम लोग निदान या डायग्नोसिस कर सकते हैं। और सिर्फ डायग्नोसिस की बात ही नहीं है, कुछ बीमारियां ऐसी भी है कि जिनको हम लोग बच्चा पैदा होने के पहले उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो जैसे दिल की धड़कन का प्रॉब्लम होना, तो जिनको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में SVT ऐसे बोलते हैं, जिसमें दिल की धड़कन जो है बहुत तेज हो जाती है, लगभग 200 के ऊपर तक चली जाती है। तो ऐसी कुछ चीजें होती जिसको हम लोग अगर माँ को दवाई दे तो माँ के गर्भ के जरिए वो दवाई बच्चे के हार्ट में पहुंच के वो उसका काम कर सकती है और दिल की धड़कन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो उस दवाई का माँ की सेहत या माँ के दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता है?
1: जी बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए हमको कई बारी वो माताओं को हमको हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि जैसे हम लोग कुछ अंतराल पे उनकी ECG कराना, ब्लड की जांच कराना, ये चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं ताकि दवाई से मदर को प्रॉब्लम ना हो। हालांकि डोज कई बारी इतना ज्यादा नहीं होता है कि जिससे वो मदर को प्रॉब्लम हो।
0: डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे प्रेगनेंसी में रेगुलर सोनोग्राफीज की जाती हैं बच्चे की डेवलपमेंट देखने के लिए, तो कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर हमें बच्चे के दिल का चेकअप करने के लिए वो आपने जो ECG कहा है या आपने जो सोनोग्राफी कहा है वो करवानी चाहिए?

0: ये
1: राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स आके हमको बोलते हैं सर हमने तो सारे जांच करवाए थे, हमको कैसे नहीं पता चला। तो इसमें अभी ये सवाल का मैं दो तरीके से जवाब दूंगा। एक होता है कि किन केसेस में हम लोगों को ये स्पेशल स्कैन्स करने चाहिए। स्पेशल स्कैन यानी उनको बोला जाता है एनोमली स्कैन या फीटल इकोकार्डियोग्राफी। ये दो टेस्ट होते हैं जो बच्चे के हार्ट को हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो माताएं जिनमें या तो कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उनकी थायराइड की प्रॉब्लम है या उनकी कुछ मेडिसिंस चल रही है, या वो माताओं को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या ऐसी जो माताएं हैं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, या कुछ फैमिली जिनमें ऑलरेडी उनके पास एक बच्चा है जिसको हार्ट की बीमारी थी, पैदाइशी हार्ट की बीमारी थी, तो ऐसे कुछ सिचुएशंस है जिसमें ये टेस्ट करना आवश्यक है, मैंडेटरी है। तो ये एक चीज़ हो गई, राइट। दूसरी होती है कि आप हर केस में आप एनोमली स्कैन करके देख लो। जैसे कुछ पश्चिमी देश अगर आप देख ले, कैनेडा फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे हर माताओं का ये स्कैन होता है और हर बच्चे का निदान पहले ही हो जाता है पैदा होने के पहले। तो वो हमारे देश में करना बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और इतने डॉक्टर तो है नहीं हमारे पास। तो इसीलिए ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हम लोग बोलते हैं जिनमें माताओं को ये प्रॉब्लम है या फैमिली में किसी को जन्म से हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उस सिचुएशन में ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
0: और इस वक्त हमारे लिए जरूरी है एक गाने के लिए ब्रेक लेना, तो सॉन्ग के उस पार मिलते हैं आपसे, क्योंकि बातें होंगी बेशुमार। हमारे साथ बने रहेंगे डॉक्टर।

डॉक्टर श्रीपाल जैन से आरजे ममता की बातचीत का दूसरा भाग आप कुछ ही देर में एशियन गेम्स 2026 के अपडेट के बाद सुन सकेंगे। 11:35 पर बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स आईची नगोया में भारत के हिस्से आई है शानदार सफलता, स्वर्णिम सफलता। नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही, जो उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से 2 शॉट आगे था। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया है। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और उन्होंने ये गोल्ड मेडल के साथ किया है। 26 साल की नीरू ढांडा भारत की लीडिंग ट्रैप शूटर हैं। 2022 में ओसिजेक में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और तब से ISSF सर्किट पर एक रेगुलर फाइनलिस्ट के तौर पर वो दिखती हैं। 2025 में उन्होंने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता और शॉटगन शूटिंग में भारत की टॉप परफॉर्मर्स में से एक बन गई। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में विमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप में ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। तो इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड, एक नई सफलता, लगातार सफलता प्रेरणा नीरू ने हासिल करी और भारत के लिए भी अब स्वर्ण पदक की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। शूटिंग में ये दूसरा गोल्ड मेडल है।
2: एंड देयर इज ऑल्सो अ बिग रिजल्ट कमिंग इन मुदिता फ्रॉम बॉक्सिंग। इंडियाज परवीन हुडा हैज स्टॉर्म्ड इट इनटू द वुमेन्स 65 किलोग्राम फाइनल आफ्टर कमांडिंग अ 5-0 विक्ट्री ओवर चाइनाज ली शू इन द सेमी फाइनल। विद दिस विन परवीन बिकम्स द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर एट द ऑन गोइंग एशियन गेम्स टू बुक अ प्लेस इन अ गोल्ड मेडल बाउट। शी विल नाउ कम्पीट फॉर द टॉप प्राइज इन द फाइनल। दिस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट रिटर्न टू द एशियन गेम्स।

0: for Parveen, who had won a bronze medal at the Hangzhou Games.
1: बिल्कुल प्रेरणा. और अब हम चलते हैं आर्चरी की तरफ. रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल में कुमकुम अनिल मोहोद ने बांग्लादेश की साइमा सलाहुद्दीन को 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला अब होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यंग से. कांग चाई यंग ने भारत की ही दूसरी निशानेबाज कीर्ति शर्मा को 7-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. ये दिलचस्प मुकाबला अब देखने वाला और बन गया है प्रेरणा. वहीं धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने भी आज सुबह अपने मुकाबले जीत कर क्वार्टर फाइनल में पहले ही जगह पक्की कर ली है.
0: The day has been unexpected for us, and we have another result coming in from tennis. India's Dakshineshwar Suresh has booked his place in the next round of the men's single after a straight set victory over Indonesia's Guawan in the second round. Suresh won the match 7-5, 7-6, with the second set going to a tiebreak, which he won 7-2. It was a strong serving performance from the Indian, who won 80% of his points behind both his first and second serves in the opening set, improving his second serve percentage to 85% in the second. There was just one break of serve in the entire match, which came in the opening set before Suresh held his nerve in the second set tiebreak to steal the win. And India's Sumit Nagpal is also currently dominating his men's single round match against South Korea's Seong Chun Hong. After taking the first set 6-4, Nagal has rode ahead in the second set with a 2-0 lead as the match continues live at the Nagoya City Higashimiya Park Tennis Center.
1: जी, और इसके साथ ही अब आने वाले मुकाबलों के बारे में प्रेरणा हमें बताइए आप.
0: And उससे पहले इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली क्लाइम टू द 11th प्लेस ऑन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स विद another gold medal added to the collection, and India's count now stands at 5 gold and 21 silver and 21 bronze, bringing the total tally to 47 medals. Team India is now sitting right on the edge of the top 10, and we are just behind 10th placed Malaysia.
1: तो इस बड़ी खबर, इस स्वर्णिम खबर के साथ ही हम अब इस अपडेट को समाप्त करते हैं. अगले अपडेट में हम शायद और पदकों की खबर के साथ वापस आएंगे प्रेरणा, और अपने श्रोताओं से फिर से मुखातिब होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: आइए सुनते हैं एफएम रेनबो पर डॉक्टर श्रीपाल जैन से आरजे ममता की बातचीत का दूसरा भाग।
1: वेलकम बैक। आपके दिल का ख्याल और आपके बच्चों के दिल का ख्याल इस वक्त हम रख रहे हैं, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो अभी तक जन्मे नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद कई बच्चों को बहुत कम उम्र में देखा गया है कि हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई लोग का ये मानना है कि शायद ये हेरिडिटी की वजह से होता है। कई लोग जो है बहुत तरह के ऐसी बातों में विश्वास रखते हैं जिनका सुपरस्टिशियस जिसे कहते हैं। कितनी सच्चाई है जेनेटिक्स में, कितनी सच्चाई है सुपरस्टिशन में? आज हम ये मिथ और फैक्ट की बात को क्लियर करना चाहते हैं।
2: राइट। जहां तक सुपरस्टिशन का सवाल है तो ये बेबुनियादी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जहां तक जेनेटिक या अनुवांशिक जिसको हम लोग बोलते हैं उसका सवाल है, डेफिनेटली इसमें रोल है, बट ऐसा नहीं है कि जो हर हार्ट की प्रॉब्लम है वो उसका लेना देना जेनेटिक से होता है। कई चीजें होती है जो अचानक से आ गई है, जिसमें फैमिली में कोई, जैसे आपको कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है कि किसी पहले बच्चे में या माँ बाप में कोई हार्ट की बीमारी थी करके। कई बारी लोग बोलते हैं सर हमारे दादाजी को ये प्रॉब्लम थी, बट ये समझना आपको जरूरी है कि वक्त के साथ जैसे आपकी उम्र हो जाती है आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहने वाली है। तो वो चीजें बिल्कुल अलग है कंपेयर टू जो हम लोग बच्चों में देखते हैं। जो जन्मजात हृदय के प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल अलग है, और बड़े लोगों की बीमारी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, अगर किसी फैमिली में, जैसे मैंने बताया था पहले, अगर किसी बच्चे को हार्ट की बीमारी है और दूसरे बच्चे में भी आपको ये बीमारी आ गई है, या किसी एक या माता या पिता को हार्ट की बीमारी थी और वो बच्चे में भी आ गई है, तो उस हालात में हम डेफिनेटली जेनेटिक प्रॉब्लम होने का सोचेंगे। प्लस कुछ हार्ट की बीमारियां बाय इट्सेल्फ, जैसे कुछ बीमारियां होती है जिसमें हम लोगों को डाउट आ जाता है कि ये जेनेटिक ही होना चाहिए। कुछ हार्ट के ट्यूमर्स हो गए कि हार्ट के अंदर आपको जो ट्यूमर मिल गए तो उसमें आपके

0: वो चांसेस जेनेटिक होने के बढ़ जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर हार्ट की बीमारियां होती है जिसमें आपको हार्ट के होल के अलावा कोई नसों में ब्लॉकेज मिलना, तो उसमें भी हम लोग सोचते हैं कि ये जेनेटिक इसमें होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो जिस सिचुएशन में फिर वो हमको टेस्ट करके देखना होता है, क्योंकि जेनेटिक बीमारियां जो होती है वो सिर्फ हार्ट को अफेक्ट नहीं करने वाली है, वो आपकी बाकी चीजों को भी वो अफेक्ट कर सकती है, और जिसपे हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि ताकि वो प्रॉब्लम आगे जाके बढ़े नहीं करके।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं और आजकल तो देखने में आ रहा है कि 10 से 12 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी खान पान में कुछ बदलाव हुए हैं, या बच्चों के ऊपर स्ट्रेस इतना आ गया है पढ़ाई को लेके, कॉम्पिटिशन को लेके, क्या ये सब रीजन उसके लिए जिम्मेदार हैं?
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, बिकॉज सबसे पहले तो मैं ये एक चीज को गलत साबित करना चाहूंगा कि छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की बीमारियां नहीं बढ़ी है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि कोई बच्चा अगर किसी हार्ट की बीमारी की वजह से अगर उसका देहांत हो जाता है तो कॉमन लैंग्वेज में सब वही सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक था करके
1: जी।
0: बट वो हार्ट अटैक जो हम लोग बड़े लोगों में देखते हैं ना, वो और ये चीजों में बहुत अंतर है। बच्चों में कई हार्ट की बीमारियां है कि जिस वजह से उनका बच्चों का देहांत हो सकता है, डेथ हो सकती है, बट वो हार्ट अटैक नहीं कहलाती है, वो उसके कुछ और वजह हो सकती है। जहां तक हार्ट अटैक जो एक्चुअल हार्ट अटैक हम लोग बोलते हैं उसका अगर सवाल पूछोगे तो कुछ लोगों में, जैसे मैं बोलूंगा 20-30 साल की उम्र के लोगों में डेफिनेटली ये चीजों का इंसिडेंस हम लोग देख रहे हैं कि ये बढ़ गया है, और उसका लेना देना डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल से है। जहां हम लोग देख रहे हैं कि आजकल अक्सर लोग जो है वो उनका काम बैठ के करना होता है, कंप्यूटर पे करना होता है, खान पान में हमारे डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। खाना पीना इतना इजीली अवेलेबल हो गया, आप फोन पे ऑर्डर कर दीजिए आपको मिल जाता है। प्लस फूड हैबिट्स हम लोग जो देखेंगे, यू नो, जो जैसे उसमें रिफाइंड फूड हो गए,
1: फास्ट फूड हो गए,
0: बटर, चीज, तो इसका हम लोग की मात्रा डेफिनेटली बहुत बढ़ गई है और हमारी एक्टिविटी कम होते जा रही है, जिसके चलते जो हार्ट अटैक की इंसिडेंस है वो थोड़े यंग लोगों में देखा जा रहा है। बट बच्चों में मैं नहीं कहूंगा कि ये हार्ट अटैक की बीमारी है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, अब बच्चों में अक्सर वो चेस्ट पेन हार्ट की वजह से नहीं रहता है, कई और कारण रहते हैं, बट उस सिचुएशन में उनकी हार्ट की जाँच करना बहुत जरूरी हो जाती है।
1: और इस वक्त हम भी जांच करना चाहते हैं, हमारे जितने भी श्रोता हैं उनके पल्सेस की, तो वो कह रहे हैं इस वक्त उन्हें बहुत जरूरी है एक गाना सुनना। तो चलिए इस गीत के बाद लौट कर आते हैं और आखिरी हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आपसे करना चाहेंगे।

0: खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फीटल एंड पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीपाल जैन, जिन्हें इस फील्ड में 17 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को अब जो है हार्ट चेकअप की ज़रूरत है।
1: सो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम लोग एज को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो नवजात बच्चे हैं या यू नो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनमें सबसे पहले तो उनका बराबर से दूध नहीं पी पाना, कि यू नो माताएं कोशिश कर रही है दूध पिलाने का बट वो बराबर से खींच नहीं पा रहे, बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस उनकी फूलने लग जाती है, सर पे पसीना पसीना हो गया है, तो वो एक चीज़ होगी। दूसरा हो गया कि इस वजह से उनका वजन बराबर नहीं बढ़ पाना, और कुछ बच्चों में नीलापन आना। तो जब हम लोग कहते हैं नीलापन तो कहाँ देखना होता है, तो आपको वो होता है कि जैसे उंगलियाँ हो गई, उनके होंठ हो गए, नाक हो गए, पैर के नाखून हो गए, तो ये चीज़ अगर आपके नीले पड़ रहे हैं तो ये चीज़ों में आपको फिर हार्ट की जाँच कराना ज़रूरी है। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़े बड़े बच्चे हैं कि जैसे कुछ 4, 5, 6 साल के हो गए, तो जब वो खेलना कूदना शुरू कर दिया उन लोगों ने, तो अगर खेल कूद में अगर वो बच्चा पीछे है, उसके दोस्त है अगर जैसे बहुत ज़्यादा खेल रहे उसके मुकाबले ये बच्चा जल्दी थक जा रहा है, तो डेफिनेटली हम लोगों को उसमें हार्ट की चेकअप करने की बहुत ज़रूरत है। कई बारी बच्चों के डॉक्टर होते हैं जो चेकअप करते वक्त ही खुद आपको बोल देते हैं कि यू नो जैसे हार्ट में हमको कुछ अलग से आवाज़ आ रही है, तो आप इसका आप जाँच करा लीजिए। तो ये चीज़ों को हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, ज़रूरी है उसमें आपको हार्ट का चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर बड़े बच्चे हो जाते हैं कि जैसे 10 साल 12 साल के, तो उनमें भी ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर वो उनके दोस्तों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी थक जा रहे हैं, कभी खेलते वक्त वो बता रहे हैं कि सांस फूल रही है या सीने में दर्द हो रहा है, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अभी उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ट का चेकअप करा लें, खास करके 2D इको और ECG। इको जो होता है एक हार्ट की सोनोग्राफी है जिससे हम लोग हार्ट के अंदर देखते हैं, ECG जो है वो आपको हार्ट की धड़कन के बारे में बता, तो ये चीज़ों से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसको किसी हार्ट की बीमारी है या नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे में जो स्कूल जाता है और इस तरह की दिक्कतें कोई उसमें दिखाई दे, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, दिल में छेद का होना एक बीमारी होती है, बाइकस्पिड एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, या ब्लड जो है ठीक से फ्लो नहीं हो पाना हार्ट में, इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में बच्चों को और स्कूल को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उन बच्चों को लेकर?
1: राइट, तो ये आज की तारीख में ये चीजों के लिए अच्छे गाइडलाइंस है कि किस कंडीशन में और उसकी क्या सिवियरिटी में, कि वो प्रॉब्लम कितनी ज्यादा जटिल है, उसके हिसाब से

0: नहीं कर सकते कि वो बच्चे को हर चीज करना चाहिए। बट सुराग अगर बड़ा है तो जनरली वो बच्चे हम लोगों को बहुत जल्दी ही पता चल जाते हैं, और अक्सर वो ऑपरेशन के बाद वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, हर बच्चा जो कर सकता है उसकी उम्र का वो बच्चा भी कर पाएगा। तो ये गाइडलाइंस के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर कि 2D को कर लिया कि ये बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। सेम चीज हम लोग एडवाइस में लिख के स्कूल को देते हैं जो स्कूल उसको फॉलो कर सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, चलते चलते बस आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि कैसे रखें अपने दिल का ख्याल, कैसे रखें अपने बच्चों के दिल का ख्याल।
0: बिल्कुल, पहले तो आपको सिम्टम्स है या नहीं है वो चीजें देखनी है। सिम्टम्स नहीं है तो अच्छी बात है, अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने अगर सस्पेक्ट किया है तो आप बिल्कुल हार्ट का जांच करवा के कंफर्म कर लीजिए या बीमारी है या नहीं है। तो अगर आपको कोई हार्ट की जन्म से बीमारी नहीं है तो अच्छी बात है, तो अभी आगे जाके आपको बीमारी ना आए उसके लिए आपको खान पान और लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है। बच्चों को जितना हो सके मोबाइल की आदत कम डाले ताकि वो ज़्यादा करके ग्राउंड प्लेग्राउंड में जाके खेले। आउटडोर एक्टिविटी जितना वो बच्चा करेगा हार्ट उसका उतना हेल्दी रहने वाला है। अगर हार्ट की बीमारी निकल आती है तो मेजॉरिटी केसेस 100 में से मैं बोलूँगा 90 केसेस है जिनका हम लोग आसानी से इलाज कर सकते हैं और वो बच्चे नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं।
1: सो डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ आए, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो ये थे डॉक्टर श्रीपाल जैन, जिन्होंने हमें दिल से जुड़ी कुछ खास बातें बताई कि कैसे हम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। उम्मीद है इसके बाद आप भी जो है इनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्रीपाल जैन से आरजे ममता की बातचीत, वर्ल्ड हार्ट डे दिवस पर विशेष कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, वक्त है समाचारों का। समाचारों के उस पार म्यूजिक कैफे प्रोग्राम आप सुन सकेंगे।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आरजे नमित, आपके साथ पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कल आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे. साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़कर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है. सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 के 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,45,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है. इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए शुरू किए गए फास्टैग वार्षिक पास की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है. पिछले वर्ष 15 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये उपलब्धि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सुगम और किफ़ायती यात्रा विकल्प प्रदान करने के कारण निजी वाहन मालिकों के बीच वार्षिक पास की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है. स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान के पृथ्वी की कक्षा में सफल प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. ये अंतरिक्ष यान 10 घंटे की उड़ान के दौरान पृथ्वी के 6 चक्कर लगाएगा और फिर चिली के पश्चिम में प्रशांत महासागर में उतरेगा. और समाचारों के अंत में, भारतीय महिला निशानेबाज नीरू ढांडा ने एशियाई खेलों की ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. इस कैटेगरी में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक मिला है. इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है. हाय, हेलो, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छ कसकाय मुंबई. मैं हूँ आरजे नमिता, आपके साथ करने आई हूँ दिल की बात. और आज के दिन तो दिल की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि आज है वर्ल्ड हार्ट डे. म्यूजिक कैफे के इस सेगमेंट में आज हमारे साथ भी जुड़े हैं एक विशेषज्ञ, जिनका अनुभव और एक्सपर्टीज सीधे दिल की धड़कनों से जुड़ा है. हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल झाबरिया, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट जसलोक हॉस्पिटल के और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के, एंड एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं ये इमरजेंसी कार्डियोलॉजी जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के. तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: थैंक यू नमिता, एंड सबको वेरी हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे, एंड आई होप सबका दिल अच्छे से चलता रहे इस दिन.
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. आज का दिन हम मनाते ही इसीलिए हैं कि शायद कुछ जो हमारी कमियां हैं, जो रह गई हैं, हम जिस पे विचार विमर्श नहीं कर पाए, उस पे फिर से पुनः विचार करें, ध्यान दें. हेल्थ तो वेल्थ होती है, हम सभी जानते हैं. आज हम सब

0: करेंगे दिल की सेहत, हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस, प्रिवेंशन केयर और उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहला जो सवाल मैं आपसे करूँगी कि दिल को हम अक्सर सिर्फ प्यार और जज्बात से जोड़ते हैं, लेकिन मेडिकली देखें तो हमारा हार्ट हमें कौन कौन से संकेत देता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं?
1: लेकिन अमिताभ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग को सबको, जब भी हम लोग सुनते हैं, आजकल सेलिब्रिटीज हैं, कुछ कुछ यंग लोगों को हमने देखा है, सडनली अच्छे खासे चलते फिरते लोग अगले दिन नहीं रहते हैं क्योंकि हार्ट अटैक आ गया। बट हमेशा हार्ट साइंस देता है, अगर वो साइन टाइम पे पिक करे तो वो एक अपन जानलेवा बीमारी को टाइम पे रोक दे तो अपन जान बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सबसे इम्पोर्टेंट साइन जो मैं कहता हूँ मेरे पेशेंट्स को समझने के लिए, हम लोग का हर एक का अपना एक एक्सरसाइज कैपेसिटी होता है। मतलब मैं अगर आधा घंटा ट्रेडमिल करता हूँ या फिर मेरे कोई दोस्त होंगे जो मैराथन दौड़ते हैं, बट आज वो लोग हमेशा से कर पाते हैं, बट आज अगर वो उनको बोले कि आपको उतना ही एक्सरसाइज करना है जितना आप रेगुलरली करते हैं, जैसे अगर मैं आधा घंटा ट्रेडमिल करता हूँ, मेरे को 15 मिनट के बाद छाती में कुछ घबराहट सी होने लगे या कुछ हाथ में दर्द होने लगे या फिर मेरे को अनकंफर्टेबल होने लगे, जो मेरा रूटीन था, अगर मैं वो रूटीन नहीं कर पा रहा हूँ तो शरीर में कुछ गड़बड़ है।
0: बिल्कुल।
1: ये सबसे पहला साइन आता है जो कुछ दिन पहले से चालू हो जाता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। वो अगर अपन टाइम पे पिक कर लें कि मैं तो डॉक्टर साहब रोज एक्सरसाइज करता था, आधा घंटा ट्रेडमिल करता था, या मैं 5 माला चढ़ता था, या मैं 1 घंटा वॉक के लिए जाता था, और मेरे को 15 मिनट चलने के बाद कुछ घबराहट होने लगती है, तो दिस इज अ वेरी बिग अलार्मिंग साइन। तो सबसे पहली चीज होती है, हम लोग बोलते हैं अफर्ट इनटॉलरेंस, मतलब जो अपन रेगुलर एक्टिविटीज कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे।
0: जी जी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो जिम में ही होते हैं, यानी बहुत हष्ट पुष्ट व्यक्ति है और रेगुलर जिमिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया या इसी दौरान उनको दौरा पड़ा है, तो उनके लिए क्या चेतावनियां हैं और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
1: लेकिन अमिता, ये जो लाइफ है पूरी अपनी, ये बैलेंस के ऊपर टिकी हुई है।
0: करेक्ट।
1: किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे ही एक्सरसाइज का भी एक्सेस अच्छा नहीं है।
0: जी,
1: तो जब अपन ओवरडू करते हैं, कभी कभी आप जिम्स में बहुत सारे मेडिकेशंस और अपने टॉलरेंस बढ़ाने के लिए दे यूज सम स्टेरॉइड्स और सम मेडिकेशंस जो अपने हार्ट के लिए अच्छे नहीं है, जो अपने बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब भी अपन अपना एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए।
0: जी,
1: मेरे पास, हम लोग का ऑफिस 17 माले पे है, मैं जानता हूँ जो लोग 17 फ्लोर चढ़ के आते हैं, मेरे को भी चढ़ने के लिए बोले तो शायद मैं बीच में ही गिर जाऊँ।
0: मतलब बिल्कुल।
1: तो अगर मेरे को करना है 17 फ्लोर तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं आज 5 करूंगा, फिर 6 करूंगा, फिर 7 करूंगा, तो धीरे धीरे करके मेरे शरीर को एडजस्ट करने दूंगा। तो अगर अपन एडजस्ट नहीं करने देंगे तो अपन इमरजेंसी में लैंड अप।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: वो एक एक्सरसाइज का बैलेंस,
0: बैलेंस जिस तरह हम डाइट के लिए बैलेंस डाइट की ओर जाते हैं, वैसे ही बैलेंस एक्सरसाइज
1: का, एक्सरसाइज का, न्यूट्रिशन का, इन सब का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अपन को एक्सेस नहीं करना है।
0: जी जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों की किसी भी तरीके की चीज जो एक्सेस होती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है। वैसे हार्ट अटैक में हमेशा सीने में तेज दर्द होने की बात कही जाती है, अक्सर महिलाओं और डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: लेकिन अभी तो नॉर्मली अपन लोगों ने पिक्चरों में देखा है कि किसी को छाती में दर्द हुआ तो वो एक हाथ छाती पे रखते हैं और 2 मिनट के बाद वो गिर जाते हैं। नॉर्मली वो आगे लेफ्ट साइड पे चेस्ट पेन होता है, वो एक क्लासिकल चेस्ट पेन होता है जो सब पेशेंट्स को, कॉमन पेशेंट्स को होता है, बट डायबिटिक पेशेंट्स को और फीमेल्स में थोड़ा सा टिपिकल चेस्ट पेन जो हम लोग बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, जो हाथ में जा रहा है या गर्दन में आ रहा है या बैक साइड पे जा रहा है, वो थोड़ा कम कॉमन होता है। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स की नसें थोड़ी कमजोर होती है तो उनका जो सेंसेशन होता है पेन को पिकअप करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिमिलरली फीमेल्स में भी। तो उनके केसेस में कभी कभी सिर्फ उनको घबराहट होती है या पसीना आता है या फिर एसिडिटी जैसा लगता है या फिर सिर्फ सांस की तकलीफ होने जैसे लगता है।
0: एग्जैक्टली, ये एसिडिटी का जो बात कही आपने, कई बार एसिडिटी होने पर भी क्या लोगों को सीने में, चेस्ट में भी पेन होता है, बैक पे भी पेन होता है और जॉ में भी होता है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हार्ट का कुछ हुआ है उन्हें या सिंपल गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट बेसिस पे उन्हें क्या करना चाहिए?
1: लाइन में बताना चाहूंगा, मेरे पास एक पेशेंट, जब भी हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे पास कॉमनली आते हैं, वो एक लाइन मेरे को जरूर बोलते हैं कि सर ऐसा लगता है किसी ने छाती पे वजन रख दिया और ऐसी सेंसेशन मैंने कभी फील नहीं की है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एसिडिटी अपन सबको होती है।

0: कभी बाहर खा लिया, कभी ओवर खा लिया, कभी कुछ ज्यादा तीखा हो गया या कुछ हैवी हो गया, तो एसिडिटी अपन को हर बार कभी ना कभी हुई है। एसिडिटी अपन थोड़ा सा वॉक करते हैं या कुछ थोड़ा पानी पी लिया या कुछ ठंडा पी लिया या एसिडिटी की गोली ले ली तो थोड़ी देर में वो रिजॉल्व हो जाती है। वीजा भी जो छाती का दर्द होता है, अगर किसी को हार्ट का अटैक आया है तो वो जब अगर अपन सपोज घर पे वॉक करने लगे एसिडिटी गैस रिलीज करने के लिए तो पेन और बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल। अच्छा, इसके प्रिवेंशन के लिए तुरंत में हमें क्या करना चाहिए, जितना हमारे पास, क्योंकि सभी को पता है कि टाइम बहुत कम रहता है इस बीच में,
0: समय बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है अपन को कॉल फॉर हेल्प करनी चाहिए, कि मतलब मदद के लिए बुलाएं। अगर अपन घर पे अकेले हैं तो किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को, बहुत बार रात को है ना हिचकिचाहट होती है, अरे रात को क्यों किसी को डिस्टर्ब करे, सुबह को देखेंगे, बट वो हिचकिचाहट नहीं रखने का। जरूरी है तो आप हॉस्पिटल में जाइए, रिलेटिव्स को बुलाइए, दोस्तों को बुलाइए, जिसको बुला सकते हैं बुलाइए। हम लोग जब हमारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो उनको सबसे पहले तसल्ली देते हैं कि घबराइए मत, शांत हो जाइए। अगर अपन घबराते हैं तो हार्ट पे लोड और बढ़ाता है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: डिस्प्रिन नाम की गोली आती है, एस्प्रिन नाम की गोली, डिस्प्रिन नाम से अवेलेबल होती है बहुत इजीली। अगर वो घर पे अवेलेबल है एस्प्रिन नाम की गोली तो वो लेनी चाहिए हार्ट अटैक के टाइम पे, वो हार्ट को क्लॉट खून पतला करने में मदद करती है और वो मदद करती है हार्ट अटैक की वजह से कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए।
1: बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं। और इस वक्त जो है ना, एक छोटा सा गोली हम भी अपने लिसनर्स को देना चाहते हैं, और वो गोली है एंटरटेनमेंट की। तो छोटा सा एक प्यारा सा गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी इस गाने के उस पार। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ, म्यूजिकल ईयर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल जी, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर, और साथ ही दो दो हॉस्पिटल्स के बड़े नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल है, इनसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगे ये जानना चाहूँगी मैं कि ये जो हमारे लिसनर्स हैं, उन सबको भी ये एक बार ज़रूर लाइफस्टाइल में कभी ना कभी ये हुआ होगा कि मैं तो यंग हूँ, मुझे तो कोई हार्ट डिसीज़ हो नहीं सकता, मैं अच्छा खाता रहता हूँ, और अचानक कुछ हो जाता है और बहुत अर्ली एज में ही हार्ट अटैक जैसी बीमारी का के लक्षण भी आते हैं। इवन बीपी का प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाता है, बच्चों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, तो क्या सलाह है आपकी?
1: नमिता, आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, आधे से ज्यादा चीजें ऑनलाइन हो गई हैं।
0: जी,
1: 20-25 साल पहले हम लोग बाहर मार्केट जाते थे, कुछ भी सामान लेना होता था, एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा होती थी, पैदल जाते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे, आजकल हर जगह एलिवेटर्स हैं, एक्सरसाइज चेंज कम हो गई है, खाना बहुत चेंज हो गया है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं। तो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि यंग एंड यंग पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गया है। पहले हम लोग जब पढ़ रहे होते थे 20-25 साल पहले, कोई 20-25 साल का इंसान आया, बोला हमको छाती में दर्द है, तो हम लोग उसको एसिडिटी का दवाई देके घर भेज देते थे, बट अभी नहीं करते, हम लोग इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यंग पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक देखते हैं, और ये इसका मुख्य कारण है लाइफस्टाइल में चेंज आना, एक्सरसाइज की कमी, स्ट्रेस का बढ़ना, और खाने में जो चेंजेस आए हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम्स ला रहे हैं। और ये अभी बचपन से चालू हो गया है, अभी मतलब आप स्कूल के बच्चों में भी देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो स्टडीज आ रही हैं उसमें, ये मतलब वो लोग अभी बचपन से फोकस करने लगे हैं कि उनको फास्ट फूड ज्यादा मत खिलाइए, उनको बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में थोड़ा ज्यादा रखिए। पहले हम लोग बाहर ज्यादा रहते थे, घर पे कम रहते, अभी मोबाइल और स्क्रीन टाइम, लैपटॉप टाइम, ऑनलाइन टाइम, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, सब चीज ऑनलाइन आपके घर बैठे आ जाती है, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कम कर दी है बहुत।
0: जी हाँ, तो कोई एक ऐसी कोई बात आप बोलना चाहेंगे जिसमें मतलब लोग जो मिथ है उसको ना करें, कोई मिथ ऐसा जो आपको लगता है कि हार्ट को लेके ये चीजों को बहुत फॉलो किया जा रहा है और इन इन चीजों को नहीं फॉलो किया जा रहा, तो एक सलाह
1: मैं एक बताऊंगा, इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज

0: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन बीमारियों के कोई सिम्टम्स नहीं होते।
1: अच्छा,
0: तो लोग बोलते हैं हम तो हेल्दी हैं, हम तो कभी हॉस्पिटल गए ही नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो उनको ये डर लगता है कि हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो बीमारी निकल जाएगी, तो उसकी दवाई चार्ज लेनी पड़ेगी जिंदगी पर। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, सपोज किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर वो दवाई लेंगे तो उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा, स्ट्रोक आने का रिस्क कम हो जाएगा, पैरालिसिस का रिस्क कम हो जाएगा, किडनी फेलियर का रिस्क कम हो जाएगा। मैं ऐसे यंग लोगों को जानता हूँ जो 3-4 साल पहले ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ, इग्नोर किया और अभी डायलिसिस पे है।
1: बाप रे, ये सब आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल शेयर करें कि कोई ऐसे पेशेंट या कोई ऐसे
0: 30 साल
1: मरीज आपके सामने हो।
0: एक पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ 4 साल पहले,
1: जी,
0: तो एक बार फैमिली डॉक्टर के पास गए तो बोला ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा, हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, कुछ नहीं किया। 4 साल के बाद हेल्थ चेकअप के लिए गए, इंश्योरेंस के लिए मेडिकल करते हैं तो पता पड़ा कि उनकी किडनी पूरी डैमेज हो गई है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद डायलिसिस चालू हुआ, उसके बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। इज फाइन, बट हर एक को मौका नहीं मिलता। दूसरा एक पेशेंट है, ऐसे ही ब्लड प्रेशर इग्नोर किया, ब्रेन की नस फट गई, ब्लड प्रेशर 210 हो गया था और डीप पैरालिसिस हो गया, पेशेंट कोमा में चला गया। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस तभी आते हैं जब हम लोग को पता नहीं होते। अगर अपन को पता हो ब्लड प्रेशर है, अगर अपन से दवाई ले रहे हैं टाइम पे, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे।
1: हाँ, कम हो जाते हैं उनके
0: चांसेस। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके एक बार हेल्थ चेकअप करा दीजिए, सिंपल है।
1: जैसे ईयरली चेकअप्स आजकल चले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैकेजेस होते हैं, ईयरली चेकअप्स हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से
0: नापना कितना इजी है, अपन सब मशीन कहीं भी मेडिकल पे मिल जाती है, कहीं भी डॉक्टर के पास चले जाइए, 2 मिनट का काम है तो अपने को पता पड़ जाता है।
1: जी हाँ, जैसे आज की डेट में देखेंगे तो बीपी का मशीन हर घर में ही उपलब्ध है, घर घर में।
0: कोविड के बाद लोग बहुत अलर्ट हो गए, मतलब जैसे पल्स ऑक्सीमीटर आ गए थे, ऑक्सीजन लेवल चेक करने लगे थे।
1: जी जी।
0: तो ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत स्टैंडर्डाइज है और अच्छी मशीन है, एक रफ आइडिया डेफिनेटली लग जाता है कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि हाई है।
1: जी बिल्कुल। अच्छा, दिल का टूटना, ये एक मुहावरा सब हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जैसी कोई मेडिकल कंडीशन भी होती है?
0: जी होती है नमिता, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको हम लोग स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। मतलब कभी किसी चीज को, किसी इंसान को बहुत बड़ा इमोशनल, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस हो जाए तो हार्ट टेम्पररी कमजोर हो जाता है।
1: जी,
0: तो वो हार्ट कमजोर हो जाता है, वो हार्ट अटैक की तरह बिहेव करते हैं पेशेंट्स, बट उनका जब हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं निकलते। तो हार्ट को सिर्फ दवाइयों से सपोर्ट लगता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कुछ हफ्तों के अंदर हार्ट बिल्कुल एकदम नॉर्मल
1: आ जाता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, पर आपके साथ जाते जाते वन वर्ड वाली जो रैपिड फायर है वो जरूर खेलना चाहेंगे। आपसे मैं सवाल करूंगी और बिल्कुल एक शब्द में ही आपको जवाब देना होगा। चलिए खेलते हैं। रोज कितने कदम या कितना चलना चाहिए, वॉक कितना करना चाहिए, मैजिकल कोई नंबर हो तो बताइए।
0: 7,500 steps।
1: ओके, सुबह की वॉक या शाम की वॉक कौन सी बेटर है?
0: जब समय मिले, प्रेफरेबली सुबह की।
1: ओके, चाय या कॉफी हार्ट के लिए क्या बेटर है?
0: दोनों अच्छी है, कॉफी थोड़ी ज्यादा अच्छी है।
1: ओके, घी जो होता है वो क्या है, हमारा दोस्त है कि फो है, दुश्मन है, क्या है?
0: घी दोस्त है बट एक रिप्लेसमेंट है, घी एडिशनल है, ऑयल का रिप्लेसमेंट है।
1: ओके, जीरो फैट डाइट जरूरी है या मिथ है?
0: मिथ है, मैं बोलूंगा लो फैट डाइट एक अच्छा वर्ड होगा।
1: ओके, एंगर एंड हार्ट की बात करें तो कितना कनेक्शन है इनका?
0: बहुत बड़ा कनेक्शन है,
1: तो मतलब
0: ब्लड बढ़ जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट
1: जी
0: तकलीफ हो सकती
1: है। और स्नोरिंग एंड हार्ट हेल्थ का कोई संबंध है क्या?
0: बहुत बड़ा संबंध है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करके बीमारी होती है जो स्नोरिंग से अटैच्ड होती है।
1: okay.
0: उससे हार्ट पे भी लोड बढ़ता है।
1: दैट्स व्हाई हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि नींद में ही उन्हें अटैक आ गया, नींद में ही सब हो गया, कुछ ऐसा रेस्ट में थे फिर भी। ओके फाइन, यंग एज में हार्ट अटैक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है क्या?
0: जी, एक डिनायल होता है पेशेंट को कि हमको नहीं हो सकता, बट बहुत कॉमन है आजकल, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा।
1: ओके, हार्ट के लिए एक सुपर फूड बताइए प्लीज।
0: फिश।
1: ओके, और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है,
0: वेजिटेरियन से उनके लिए सीड्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दे आर गुड।
1: ओके, और अंत में सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि दिल के लिए आज से ये छोटे छोटे कदम ज़रूर उठाएं। डॉक्टर साहब, हम जिंदगी भर अपने मोबाइल बैटरी के परसेंटेज देखते हैं, लेकिन अपने दिल की बैटरी को कितना चार्ज करना है ये हम जानने की कोशिश नहीं करते। आज बहुत कुछ आपसे जानने को मिला डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े।

0: हमारे श्रोताओं को इतनी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू नमिता, सबको गुड लक, ऑल द बेस्ट, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़े। आप ही की पसंद का ये वाला गाना सुनते चलते हैं, ओ मेरे
1: एक
0: दिल
1: के। लास्ट में बोलूंगा
0: जी, बिल्कुल,
1: दिल खुश करने के लिए एक मुहावरा है, किसी के शब्द है, अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के साथ,
0: जी
1: ना खोलना पड़ता हमको औजारों के साथ।
0: बिल्कुल, और आपके सामने तो कई दिल खुलते होंगे।
1: हेल्दी रहिए तो हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होंगी। ऑल द बेस्ट सबको।
0: बहुत अच्छे लेसन के साथ आपने ये बात कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: थैंक यू नमिता।

तो म्यूजिक कैफे के इस सफर को देते हैं इसी गीत के साथ विराम। हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राहुल छाबरिया, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने वर्ल्ड हार्ट डे पर हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और बातों ही बातों में बहुत सारी बातें निकल आती हैं, और अंत का जो उनका मैसेज था वो भी बड़ा ही कीमती था। यकीनन आपने सुना होगा और उस पर आप ज़रूर अमल करेंगे, जिससे आपकी हेल्थ बनी रहेगी और हेल्थ इज़ वेल्थ। वैसे आगे बढ़ते हैं, पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
0: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी ने लिखा है, अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
0: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे, ये सब बात बताते हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
0: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
0: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
0: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओ, क्या हुआ था?
0: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
2: श्रोताओ, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
0: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
2: जी,
0: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
2: अजीत जी,

0: भाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
1: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
0: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
0: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया। वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
0: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
0: जी,
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति K.R. नारायणन ने उनकी माता को ये पुरस्कार प्रदान किया।
0: जी,
1: आइए श्रोताओ अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
0: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओ, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा जीत जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
3: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
3: हैं? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
4: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाए।

0: आने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
1: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
0: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
1: बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
0: बीरबल ने उत्तर दिया,
2: हुजूर अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
0: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
4: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। 4 ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हमें
3: तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: उन्हें बता देते हैं।
3: हाँ।

0: जय हिंद सर।
1: जय हिंद राम सिंह।
0: सर सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
1: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
0: जी सर।
1: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
0: जी सर।
1: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
0: जी सर।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर।

0: कालिका माता की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: भारत
2: आगे बढ़ो।
3: साहब साहब वो देखिए घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
4: फतेह सिंह अभी उन्हें और पास आने दो, जब पास आ जाएं तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
3: जी साहब।

0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा ला के देता हूँ असले का। फायर! उत्तम सिंह
3: जी सर,
2: एलएमजी सामान हाथ में छोड़, फायर कर, राइट साइड में फायर कर।
1: वो उनका साहस बढ़ाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
3: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
3: अच्छा।
4: सर, यही मशीन गन।
3: हुकुम सिंह, एक काम करो।
4: जी।
3: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
3: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को। जल्दी करो।
4: जी सर।
3: बांध दिया सर। ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
4: हाँ सर, बांध।
3: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो। जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ निकल। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
3: भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर, संभल कर।
3: सब यहाँ सर टिका लीजिए।
4: सर ऐसे
5: कालिका माता की जय।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
5: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस। फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी।

0: मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया,
1: साथी हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो,

0: अपनी जान बचाओ।
1: नहीं साहब।
0: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
1: नहीं साहब,
0: सही आदेश। इट्स एन ऑर्डर
1: सर।
0: जाओ। अलविदा अलविदा दोस्तों।
2: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
3: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
4: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
3: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
2: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साएं साएं चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
6: एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हाय हेलो सत श्री अकाल वणकम और मुंबई, हम आपके अपने प्रोग्राम हिट एंड हॉट में फिर हाजिर हैं आपकी पसंद के गाने लेकर। और कुछ एक बातें जो हम आपसे अक्सर पूछते हैं वो भी हम पूछेंगे, लेकिन पहला वाला गाना आपके लिए पेश है विजय महोबिया जी की पसंद पर, आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में। बने रहिए एफएम रेनबो पर, जारी रहेगा प्रोग्राम हिट एंड हॉट।

को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल शिवांग, संगीता गोप और लिपि, साथ ही दीपाली गोप जी झारखंड से इस गीत को पसंद करने वाले थे। और अगला जो गीत हम सुनेंगे अमित भगत की पसंद पर सुनेंगे। फिलहाल आपसे जो एक सवाल मेरा था वो छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि आपको पहचानना है फिल्म का नाम क्या है। छोटी सी स्टोरी लाइन आपको बता रही हूँ, तीन रूममेट्स की कहानी है ये और एक वियर्ड सा एडवेंचर होता है उनके साथ। वो एक कॉल रिसीव करते हैं जो उनके काम का तो नहीं था लेकिन किसी तरह उस कॉल में फंस जाते हैं। कौन तीन लोग हैं, कौन सी कहानी है और कौन सी मूवी है, आपको जल्दी से लिख भेजना है। कहाँ? हमारे पास 8657661071। कौन सी फिल्म का नाम याद आ रहा है इस कहानी को सुन के? हाँ जल्दी लिख लीजिए, बिल्कुल, जो क्योंकि प्रथम आता है उसी को चांस मिलता है। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उन सभी के नाम लेना चाहूँगी। अंजू जी अंधेरी से, विजय जी, आर्यन जी, अशोक पाटिल जी, दर्शन जी, संजय दर्शन जी, बाबा जी दादर से, राकेश माथुर जी, राधेन्द्र जी, अमित जी, गोप जी झारखंड से, अशोक ठाकुर जी, प्रमोद जी, पंकज जी, यशवंत जी, संदीप जी, फिरोज जी, अजय शाकरी जी, टीडीएम जी, अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, नितिन जी हमारे साथ हैं, डिकोस्टा जी हमारे साथ हैं, मिंटू जी, पिंकी जी, लवली आरती, प्रणव शिंदे जी हमारे साथ हैं, गुरमीत सिंह, मीता सिंह भी हमारे साथ हैं, दीपा पालकर, चेतन कुमार, दिग्दर्शन और कविता, इब्राहिम जी, शुभलक्ष्मी जी, विजेंद्र जी, स्वर्णा जी, नितिन जी, अमित जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मैसेजेस जरूर पढ़े जा रहे हैं और वर्ल्ड हार्ट डे पे आप सभी की मिली हुई बधाइयां और आपको भी बहुत बहुत बधाई। सेहतमंद रहें, तनाव मुक्त रहें, धुएं से दूर रहें, जीवन का हर लम्हा खुशियों से भरा हो आपके, ये हम कामना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस गीत को सुनते चलते हैं जो कि है अमित भगत जी की पसंद का।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे राकेश माथुर जी। और हम आपको बता दें, हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि तीन रूममेट्स हैं, एक रूम में रहते हैं और उनको एक कॉल रिसीव होता है और जो उनके काम का तो नहीं होता, लेकिन वो कहानी जो है फिल्म की वो वहीं कहीं अटक जाती है फ़ोन कॉल में। सो आपको पहचानना था कौन सी फिल्म है, ये फिल्म का नाम है हेरा फेरी। और सही जवाब देने वाले हमारे दोनों ही श्रोता हैं जिनके गीत हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। अमित भगत जी ने सबसे पहले इस सवाल का जवाब दिया और साथ ही राकेश माथुर जी ने भी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और छोटे से अपडेट्स एशियन गेम्स के 5 मिनट के आपको सुनवाएंगे, लेकिन बने रहिए हिट एंड हॉट कार्यक्रम में, आपके गीत बजते रहेंगे।

0: नंदिनी मथुरे राष्ट्रीय बातम्या देत आहे. ठळक बातम्या. राज्यसभेच्या 11 जागांच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीची अधिसूचना जारी. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं ज्ञानेश कुमार यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढच्या आठवड्यात सुनावणी घेणार. ज्ञानप्रसार आणि लोकांचा दृष्टिकोन घडवण्यात प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्वाची असल्याचं केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांचं प्रतिपादन. आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये ट्रॅप नेमबाजीच्या महिला गटात भारताच्या नीरू धांडानं पटकावलं विक्रमी सुवर्णपदक. राज्यसभेच्या 11 जागांच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीची अधिसूचना निवडणूक आयोगानं जारी केली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या 10 आणि उत्तराखंडमधल्या 1 जागेचा यात समावेश आहे. पश्चिम बंगालमधल्या राज्यसभेच्या 1 जागेच्या पोटनिवडणुकीची अधिसूचनाही आयोगानं जारी केली. या निवडणुकीसाठी अर्ज करायची प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली असून मतदान 16 ऑक्टोबरला होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगानं घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिली आहे. निवडणूक आयोग घेत असलेले निर्णय
1: has been there in shooting today, Mudita.
2: जी बिल्कुल प्रेरणा, शूटिंग में आज शानदार दिन रहा है भारत का. एक के बाद एक दो सफलताएं मिली हैं. आज सुबह पहले ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता. हमारे जो श्रोता अभी तक की अपडेट्स नहीं सुन पाए थे, हम उनके लिए फिर से बताना चाहेंगे कि भारतीय महिला टीम ने ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही. उसके बाद आई वो सफलता जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था. नीरू ढांडा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया. महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस रही नीरू की. और ये एक खास बात है प्रेरणा कि ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड है भारत के लिए इस एशियन गेम्स में. 26 साल की भारतीय शूटर नीरू ढांडा, उन्होंने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही. और इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई और उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया. वहीं पुरुषों की ट्रैप शूटिंग में शपथ भारद्वाज फाइनल में पहुंचे लेकिन पदक के करीब नहीं पहुंच सके. कुवैत के खालिद अल मुदफ ने स्वर्ण पदक हासिल किया. चाइनीज ताइपे के कुनपी यांग ने रजत और चीन के की यिंग ने कांस्य पदक हासिल किया. तो इस तरह प्रेरणा शूटिंग में अब तक 15 पदक हासिल कर लिए हैं भारत ने, जिसमें 2 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं.
1: And some medals have come up officially, and now there are some unofficial medals that have also been confirmed in boxing. And stepping inside the ring, we have massive explosive updates from the Indian boxing contingent, where 3 major medal outcomes have just been locked in. Women's 65 kg semi-final, India's Parveen Hooda has stormed her way into the women's 65 kg final. With this dominant victory, she has guaranteed herself at least a silver medal, putting India within touching distance of yet another gold. Talking about the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal delivered a masterclass in the men's 80 kg semi-final to secure his spot in the gold medal match. He joins the final bound boxers, assuring Team India of at least a silver medal. Talking about men's 90+ kg semi-final, heavyweight star Narendra Berewal stood toe-to-toe in a fierce battle against world champion Ebek Urbale. Despite a courageous fight, Berewal has edged out in this semi-final encounter. Berewal officially signs off with a hard-earned bronze medal for the country. 2 final spots booked and a bronze secured. The Indian boxers are putting on an absolute

0: शो अंदर रिंग में देता।
1: और तीरंदाजी में भी प्रेरणा अच्छा दिन रहा भारत के लिए। धीरज ब्रह्मदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में कुमकुम अनिल मोहित क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और दिलचस्प बात यह है कि क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। Now taking our listeners to the cycling track where India have made it through to the bronze medal race in the women's team pursuit. The Indian quadrant put together a strong performance in the heats, clocking 4 minutes 46.950 seconds. That effort has secured them a place in the bronze medal race, giving India another opportunity to fight for a podium finish in the track cycling. The team pursuit had decided over a longer distance with the riders together as a unit and maintaining their information. And let me just take you to the medal tally, checking in all of the overall standings. Team India remains firmly positioned at 11th place on the medal leaderboard. इसके साथ ही स्क्वैश का भी हम चलते चलते बता देते हैं कि भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने भी अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही मुदिता और प्रेरणा को दीजिए इजाजत, हम कुछ देर में फिर से हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़. मैं हूं आरजे नमिता आपके साथ और हिट एंड हॉट प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम चालू हो चुका है. और जो हम प्रतियोगिता रख रहे थे, यानी कि छोटी सी पजल, छोटी सी पहेली हमारी आपके लिए थी, वो हम जारी रखते हैं और एक छोटी सी स्टोरी लाइन आपको फिर से बताते हैं. आपको फिल्म का नाम जांचना है, परखना है, बताना है. तो टीनेजर्स की कहानी है. ये कॉलेज के बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी कंपटीशन में, और ये जो कंपटीशन है वो उनकी फ्रेंडशिप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देती है. कौन सी मूवी है जल्दी से लिख भेजिए 8657661071 पर. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. आपकी पसंद के गाने बिल्कुल रेडी हैं, गर्मा गर्म. और सबसे पहले विजेंद्र जी अकोला से जो लिखते हैं, उनकी पसंद का गाना आ रहा है इस वक्त किशोर कुमार की आवाज़ में.

ಚತುರನಾರ ಅಮ ಚೋಳಗನ ಜಿ ಎ ಚತುರನಾರ ಅಮ ಪಕಡಕರ

ಗೋಳ ಚತುರ ಏಕ ಪೇರ ಏನ ಯಾ ಗೋಳ ಬೋಲ ಯಾ ಚತುರ ಬೋಲ ಯಾಕ ಚತುರ ನಾರ.

बिल्कुल, आप भी कहाँ जाएंगे, एफएम रेनबो सुनते रहेंगे, बिल्कुल हमारे साथ ही बने रहिए, क्योंकि हमारे सवाल जवाब भी हैं और आपकी पसंद के गाने भी हैं। हिट एंड हॉट का सफ़र जारी है। मैं हूँ नमिता। इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनके नाम एक बार फिर ले लेती हूँ। शुभ लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, नितिन जी हैं, पंकज जी हैं, विजेंद्र जी हैं, मीना जी हैं, अभिजीत जी, प्रणव जी, राकेश जी, एच एस भाटिया जी, यशमीत यशु जी, अविरल सिंह, मेहर अरोरा जी और उनके साथी दीपा पालकर जी, मुकेश कश्यप जी, चेतन कुमार जी, गंगा दीप जी हमारे साथ हैं, क्षमा कीजिए गगनदीप जी हैं, और साथ ही जगदीश सिंह जी, संजय दर्शन जी हमारे साथ हैं, दुलार जी हमारे साथ हैं, अमित भगत जी हैं, स्वर्णा जी हैं, इब्राहिम जी हैं, दिग्दर्शन और कविता जी हैं, गुरमीत सिंह जी हैं हमारे साथ, और ग्राम कोलित मारा से हमारे साथ रविंद्र जी हैं, रौनक जी हैं, मिंटू जी, डिकोस्टा जी, टीडीएम जी, अजय साखरे जी, फिरोज जी हमारे साथ हैं, संदीप जी, यशवंत जी, प्रमोद जी, अशोक ठाकुर जी, गोपे जी झारखंड से, राजेंद्र परमार जी, बाबा जी, अशोक पाटिल वर्ली से, आर्यन सोमवंशी जी, विजय मोहबा जी, अनुज और अंजू जी, आर्यन सोनी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारी फरमाइशें हैं लेकिन हमारे पास समय की बहुत कमी होती है, और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसके जवाब आ चुके हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत से हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। हमने सवाल पूछा था कि टीनेजर्स एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो टीनेजर्स रहते हैं इस कॉम्पिटिशन के ज़रिए अपनी फ्रेंडशिप को खो बैठते हैं। कौन सी मूवी है ये? इसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और सबसे पहले फास्ट फास्ट जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं पंकज मोहड़ जी, अमरावती से ये हमें लिखते हैं, और इनकी पसंद का ये गाना आ रहा है इस वक्त एफएम रेनबो पर।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी थे स्वर्णा सिंह। जी हाँ, स्वर्णा सिंह और उनके साथी। साथ ही हमारे साथ और भी हमारे लिसनर्स जुड़े हैं जिनके नाम लेना चाहेंगे। दर्शनाथ कदम जी लातूर से, मुकेश जी देहरादून से, प्रमोद राउत जी धाराशिव से। आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जाने का वक्त भी हो गया है, तो आप सभी से टाटा बाय बाय इजाज़त चाहती हूँ। आरजे नमिता फिर आपसे मिलेगी, इसी वादे के साथ आपसे इजाज़त है। और आगे बढ़ते हैं, मिड डे न्यूज़ का वक्त हो रहा है और कुछ ही पलों में आप मिड डे न्यूज़ सुन सकेंगे। बने रहिए FM रेनबो के साथ।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में

0: 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा, फ्लाईओवर तथा लूनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां, तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ

0: कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकअप काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
3: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
2: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
4: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
2: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
5: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

खावी कोड़ी न अरे वांगी न दौड़ का जोड़ी न काकड़ी भी खावी कोड़ी न गाजर नी मुड़ा दूधी दूध खुड़ा पावटे।

0: दश क्या हुआ?
1: कोमड़ी आदि का अंडा हो,
0: अंडा अंडा कोमड़ी
1: पतला कचाचा ठंडा हो, कोमड़ी आदि का अंडा हो, उत्तर सांगा निकाय पण मांगा, दाऊ न दाऊ माला डंडा हो,
0: पतला कचाचा ठंडा हो,
1: कोमड़ी आदि का अंडा हो, उत्तर सांगा निकाय पण मांगा, दाऊ न दाऊ माला डंडा हो,
0: सलाम जैन राहू सारे हसबू या दुनियेला,
1: सलाम जैन राहू सारे हसबू।

0: दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी को 6-2, 6-1 से हराया। वहीं पुरुष एकल के दूसरे राउंड में सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश भी अपने अपने मुकाबले जीत कर अगले राउंड में पहुंच गए हैं। अब मिश्रित युगल के पहले दौर में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा।
1: इट हैज बीन अ डे ऑफ ब्रेकिंग नेशनल रिकॉर्ड्स अर्लियर दिस मॉर्निंग इन स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इंडियन स्पीड क्लाइंबर जोगा पूर्ति डिलीवर्ड अ सेंसेशनल परफॉर्मेंस टू अ सेट न्यू बेंचमार्क कंपीटिंग इन द क्वालिफिकेशन राउंड ऑफ द वुमेन्स स्पीड क्लाइंबिंग इवेंट। जोगा क्लॉक्ड अ ब्लिस्टरिंग टाइम ऑफ 7.28 seconds, फिनिशिंग 9th ओवरऑल एंड कंफर्टेबली securing her place in the quarterfinals. That impressive 7.28 second climb not only sealed her spot in the next round, but it also shattered her own previous mark to establish a brand new national record for India in women's speed climbing.
0: और नेशनल रिकॉर्ड की बात आपने की प्रेरणा, तो एक और नया नेशनल रिकॉर्ड आज बना है मेंस पोल वॉल्ट में। देव कुमार मीना ने 5.50 meters के साथ अपना पर्सनल बेस्ट देते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। गौरतलब है कि 5.46 meters का पिछला नेशनल रिकॉर्ड भी देव मीना के नाम ही था, लेकिन इसके बाद भी मेडल की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। वो 7वें स्थान पर रहे हैं। वहीं कुलदीप कुमार 5.35 meters के साथ 10वें स्थान पर रहते हुए मुकाबले से पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन एथलेटिक्स में कुछ और खबरें भी हमारे पास हैं, क्योंकि विमेंस 800 meters के फाइनल में पूजा 7वें स्थान पर रही, लेकिन महिलाओं की ऊंची कूद के फाइनल में पूजा सिंह का शानदार प्रदर्शन जारी है और 1.80 meters के साथ वो टॉप परफॉर्मर्स में बनी हुई हैं। ऊंची कूद में सुप्रिया बासव राजू भी फाइनल में हिस्सा ले रही हैं। और इसके अलावा विमेंस हैमर थ्रो का मुकाबला भी जारी है, जिसके बारे में हम अपडेट लेकर के आएंगे आपके पास अगले अपडेट के साथ में। तब तक उसका रिजल्ट हमारे पास भी आ जाएगा। और अब इसके बाद जो मुकाबले होंगे उसमें मेंस 800 मीटर का फाइनल है, फिर मेंस 5000 मीटर का फाइनल, और इसके बाद रिले रेस है विमेंस और मेंस की 4x400 meters, और इसके अलावा रिले मिक्स फाइनल भी है 4x100 meters का, जिसमें भी भारत को पदक की उम्मीद है।
1: लेट्स शिफ्ट ओवर टू द एशियन गेम्स लीडरबोर्ड, वेयर टीम इंडिया इज करंटली होल्डिंग डाउन द 11th पोजीशन ओवरऑल। द मेडल कैबिनेट इज अप टू 47 इन टोटल, ड्रिवन बाय 21 सिल्वर 21 ब्रॉन्ज, बट द क्राउन जूल्स आर द 5 गोल्ड मेडल्स इंडिया हैज लॉक्ड इन सो फार। इन क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट टीम हैज वन गोल्ड। इन कबड्डी, विमेंस कबड्डी टीम, मेंस कबड्डी टीम अनदर गोल्ड, कमलजीत एंड सुरुचि सिंह गोल्ड, एंड नीरू धांधा। द हेडलाइन स्टोरी फ्रॉम टुडेज एक्शन वॉज नीरू धांधा क्लिनिकल विक्ट्री इन द विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल फाइनल। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द अपडेट्स फॉर नाउ। वी विल बी बैक सून विद द 5:30 PM अपडेट्स।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: मंडळी आताच आपण ऐकले एशियन गेम्स 2026 चे अपडेट्स। आकाशवाणी एफएम रेनबो। मंडळी 107.1 MHz आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची FM रेनबो प्रसारण सेवा। कार्यक्रम सुरू आहे सांजच्या पारी आणि आज आपण गप्पा मारतोय मानसिक स्वास्थ्यासाठी काय काय करता येईल यावरती। तर आपल्या एका श्रोत्यांनी अविनाश दिवेकर यांनी फोनच्या माध्यमातून दूरध्वनीच्या माध्यमातून असं कळवलं की या टिप्सच्या बरोबर अशी एक टिप्स त्यांना वाढवायची आहे की जी आहे की आम्ही FM रेनबो आणि FM गोल्ड हे दोन्ही चॅनल दिवसभरामध्ये ऐकत असतो आणि यामुळे सुद्धा आम्हाला मानसिक आमचं स्वास्थ्य चांगलं राहतं। तर खूप खूप मनापासून धन्यवाद, मला ऐकून खूप छान वाटलं आणि खरं तर आम्ही सुद्धा इथे येऊन जे काही तुमच्याशी बोलत असतो, गप्पा मारत असतो आणि हे जे आपल्या विचारांची देवाणघेवाण करत असतो, त्यामुळे आम्हाला सुद्धा अर्थातच नवीन ऊर्जा मिळत असते। तर यातलं पुढचं एक जे आहे माध्यम ते आहे अर्थातच संगीत आणि नृत्याचं। संगीतामधली अनेक अशी वाद्य आहेत छोटी छोटी की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तालासुराचं काही फारसं जरी कळत नसलं तरी सुद्धा ती वाद्य शिक

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। शाम के ठीक 5:02 का समय और ये समय होता है कार्यक्रम लव यू जिंदगी का।

लेकिन वो बात कहाँ। ऐसा लगता है ना कभी कभी, आज इतना कुछ बदल गया है हमारे आसपास, काफ़ी आसानियाँ हो चुकी हैं कुछ कुछ मामलों में, कुछ कुछ मामलों में बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन जब घर के बड़े बुजुर्गों से हम सुनते हैं पहले की बातें कैसी थी, या हमें भी कुछ साल पहले अभी अभी तो ऐसा था और अब इतना कुछ बदल गया है, ये जब होता है ना तो ऐसा लगता है ना कि आज सब कुछ झट से हो जाता है बिल्कुल। और वो जो इंतज़ार का मज़ा था, मतलब नए कपड़े ख़रीदने से लेकर हर चीज़ का, किसी के ख़त के आने का इंतज़ार, या वो जो सीजनल चीज़ें होती हैं ना मार्केट में आती हैं उनका इंतज़ार, या ऐसी कोई भी बात, वो इंतज़ार का जो मज़ा था वो ख़त्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ऐसी कुछ कुछ बातें

जरूर है कि जिनको सोच कर या हमारे घर के जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो उनसे सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आज है तो सही बहुत कुछ आसान, लेकिन वो बात कहाँ। और उनको भी ऐसा लगता है कि अरे लेकिन वो बात कहाँ। होता है ना ऐसा आपके साथ भी, कुछ कुछ चीज़ों को सोच कर, कुछ बातों को याद कर कर, कुछ पलों को याद कर, अरे हमारे टाइम पे ना हम ऐसा करते थे। लेकिन ये जो हमारा टाइम ये बात हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं रही है, ये उसका एक क्या कहेंगे मजाक भी है या आश्चर्य तो है ही है कि अरे अब ये समय इतना भी पुराना नहीं हुआ है कि जब हम कहें कि अरे पहले ऐसा था। इतना तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए रह रह कर ये बात मन में आ जाती है कि लेकिन वो बात कहाँ। सुन रहे आप लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज

आप सुन रहे कार्यक्रम लव यू जिंदगी, और ये कार्यक्रम जो है, ये समय जो है लव यू जिंदगी का, ये समय है खोए हुए खुद को ढूंढने का। कहीं किसी का म्यूजिक पीछे छूट गया है, किसी की लेखन कला भूली सी जा रही है, तो कहीं किसी की पेंटिंग दूर से जैसे आवाज दे रही है कि मुझे भूल तो नहीं गए, मुझे भी कभी कभी याद किया करो, मुझे भी कभी कभी हाय हेलो किया करो। कहते हैं ना, ऐसी आपकी कितनी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी समय से पीछे छूट गई है, और दोबारा करने की सोचने पर भी वो हो नहीं रहा है, है ना? वो सुर कहीं पे रुके हुए हैं, कहीं आप बालकनी में खड़े हो, या कहीं खिड़की से भी देख रहे हो, कहीं बाहर हाथ में चाय की प्याली लेकर, कि अरे कुछ तो है, कहीं वो सुर तो नहीं आपको पुकार रहा, कहीं वो आपकी जिंदगी को एक नया साज लेकर छेड़ने के लिए तो नहीं कह रहा, कहीं कोई अगर अपनी लेखन कला से थोड़ा सा दूर हो गया है, तो क्या पहले जो जो लिखा है वो अक्षर, या वो जो कैरेक्टर होंगे, या वो जो कविता होगी, वो कैरेक्टर्स या वो कविता या जो भी आपने लिखा था, कहीं वो आपकी बालकनी में खड़े आपसे बात तो नहीं कर रहे, कहीं आपको याद तो नहीं दिला रहे कि अरे मैं तो यहीं छोटा हूँ, अरे मुझे ज़रा मेरा हाथ पकड़ो और मुझे ज़रा आगे लेकर चलो, तो सही क्या लिखना था पूरा तो करो। पेंटिंग के लिए बिखरे हुए रंग शायद बेकरार हो कि आप कब ब्रश उठाएं और कैनवास पर वो रंग उतारें। जो भी आपके दिल का रंग है इस समय, उसको अलग रंगों में रंगने के लिए, रंगाने के लिए ये रंग ही शायद बेकरार हो। जरा सोचिए तो सही, हो सकता है ऐसा आपके साथ। ढूंढिए ढूंढिए, अगर कुछ खोया है ऐसा कुछ आपके दिल को, जरा टोलिए टटोलिए, देखिए क्या कह रहा है, क्या पीछे छूटा है, और कहिए फिर एक बार लव यू जिंदगी।

0: India to a glorious silver medal in the women's trap team event. But Neeru wasn't done yet. Stepping into the individual final, she delivered an absolute masterclass under pressure, hitting 28 out of 30 targets. That performance not only clinched the gold medal, India's second shooting gold of the games, but it also shattered the Asian record of 24. With that iconic victory, Neeru became the first Indian woman to win an Asian Games gold in any shotgun event.
1: और हम एथलेटिक्स की बात आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि अब शुरू होने वाला है महिलाओं का 4x400 मीटर रिले फाइनल, जिसका रिजल्ट आते ही हम आपको उसके बारे में भी खबर देंगे. इसके बाद होगा पुरुषों का 4x400 मीटर रिले फाइनल, जिसमें धर्मवीर चौधरी, मनु तिक्कनल, राजेश रमेश और जय कुमार हिस्सा ले रहे हैं.
0: एंड विद दोस लेटेस्ट एडिशंस कमिंग इन, टीम इंडियाज टोटल मेडल टैली हैज ऑफिशियली बम्प्ड अप टू 50 medals. So it's a half century for India, Mudita, of the medals. The country's breakdown now stands at 5 gold, 21 silver and 24 bronze. Every single edition continues to solidify India's position on the Asian Games leaderboard. With this, we come to the end of this early update, but we will be back soon at 6:30 p.m.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
1: अभी वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
3: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो.
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
3: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
3: म्यूजिकली योर्स.

आप सुन रहे कार्यक्रम लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर फिजिकली योर्स आज शुभांगी है आपके साथ। और थोड़ा सा वो जो हमने अभी अभी कुछ समय पहले कहा कि कुछ ना कुछ पीछे छूट गया है, शायद कुछ ना कुछ रह गया है, शायद वो शायद पुकार रहा हो। तो ज़रूरी नहीं कि किसी के पास अगर कोई कला नहीं है तो उसे ऐसा लगे कि अरे मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। खेलने का कितने लोगों को शौक भी होता है, पसंद भी होती है और आदत भी होती है। और कई ऐसे भी लोग हैं कि जो खेलने के लिए समय निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। रोज़ अगर जिम में जाना नहीं होता है या घर पर भी योगा करना नहीं होता है या थोड़ा सा भी अगर हम मॉर्निंग वॉक की भी सोचें तो नहीं हो रहा है, तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकालते हैं और खेलने के लिए वो समय देते हैं। तो ये भी एक अपने आप को ज़िंदगी से जुड़े रखने की बात है। क्यों नहीं लगता है रोज़ की जो भाग दौड़ होती है उससे थोड़ा सा अलग कुछ नया जो हमें एनर्जी दे जाता है, जो हमें बहुत ज़्यादा दिन भर के लिए पॉजिटिविटी देकर जाता है। और फिर उसके बाद ना जो एनर्जी हमें मिलती है, जो उत्साह हमें मिलता है, उससे हम नई चीज़ें और ज़्यादा सोच सकते हैं और ज़्यादा हम आगे बढ़ने की सोचते हैं। ऐसा नहीं लगता है, मन में नहीं आता कि अरे क्या हम वही रुके हैं, अरे क्या कब से वही चल रहा है, ये सब क्या है, कुछ चेंज चाहिए, कहीं घूमने जाते हैं। ये जो होता रहता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसीलिए फिर हम कहते हैं ना कि लव यू ज़िंदगी, यही तो बहाना है फिल्म रेनबो का ये जो प्रोग्राम है आपको ऐसे कुछ चीज़ें याद दिलाने के लिए।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।
2: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
3: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
2: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
3: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
2: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
3: म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं एक्सेस आदर्शों लेक मिगर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो। 5:54 का वक्त है और लव यू जिंदगी को समेटने का वक्त बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। जो दिन शुरू होता है वो खत्म ही होता है, जो कार्यक्रम शुरू होता है वो भी खत्म होता है, जो भी चीज आती है उसे तो टाटा बाय बाय भी करना होता ही है। तो प्रोग्राम का भी ये समय हर रोज 5 शुरू होता है, लेकिन 6 जैसे ही बजने को आते हैं उसको टाटा बाय बाय कहना ही होता है, लेकिन वो हर रोज आता है। हर रोज ये प्रोग्राम आपके लिए आता है, हर रोज एफएम रेनबो आपसे और आप एफएम रेनबो से मिलने के लिए बेकरार होते हैं, होते कि नहीं होते। तो बस इसी में मजा होता है, जब तक ये ऐसा लगता है ना कि और थोड़ा सा चाहिए था, बहुत जल्दी रुक गया, बहुत जल्दी खत्म हो गई कोई चीज, तो उसमें तो मजा होता है। मतलब बहुत देर तक चल रहा है तो ऐसा लगता है कि अरे बस बहुत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो मज़ा होता है उसको अगर बरकरार रखना है तो टाटा बाय बाय कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। जैसे आज भी अभी कुछ समय बाद कुछ मिनटों में लव यू जिंदगी को आज के लिए समेटना होगा, लेकिन आपको सुनते रहना है, हमारे साथ रहना है। म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो आकाशवाणी मुंबई 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

6:03 का समय है और अब से कुछ ही देर में ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 6:15 पर कार्यक्रम अंदाज़बियां लेकर आऊंगी मैं आपके साथ। और आपको तब तक करना है इंतजार, सुनते रहना है, हमारे साथ रहना है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज़ोन एआईआर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। शाम की ठीक 6:15 का समय है और ये समय है कार्यक्रम अंदाज़ बयां का, जिसे लेकर आई हूँ आज शाम मैं शुभांगी आपके साथ।

सुन रहे हैं आप कार्यक्रम अंदाज भैया शुभांगी आज आपके साथ और कुछ गाने ऐसे लगे, वैसे ये तो गजल थी, बड़ी खूबसूरत गजल थी। फिल्मों में कभी कभी ऐसा हुआ है कुछ गाने ऐसे रखे गए हैं, इस तरह से लिए गए हैं कि अपने दिल की बात बताई जा रही है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी पार्टी में या तो हीरोइन या तो हीरो अपने दिल की बात बता रहा है, या अगर कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल आन पड़ी है तो वो बयान कर रहा है या कर रही है, या फिर कोई सच्चाई है, कोई राज है, वो बताया जा रहा है। तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में गाना कैसे बना है, उसे कैसे लिया गया, उसकी जो ब्यूटी है, वो जो बताया जा रहा है, शब्दों का चयन जो है, वो सब एक बहुत खूबसूरत बात है। और कुछ ऐसे ही गाने मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए अंदाज़ में आमी।

0: 26 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कंटिंजेंट के लिए आज शानदार दिन रहा है। खास करके एथलेटिक्स में आज पदकों की झड़ी लग गई है। एक और स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत ने एथलेटिक्स में। इसके अलावा आज पूरे दिन भर में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 8 पदक जीते हैं भारत ने। एक एक करके हम उन सभी पदकों के बारे में बात करेंगे, खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और स्वागत है आपका एशियन गेम्स के ताजा अपडेट्स में। तो सबसे पहले प्रेरणा, मैं हूं मुदिता और साथ में है मेरे प्रेरणा। तो प्रेरणा, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड मेडल की, जो आया है महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में। किरण एम्पुवम्मा प्राची और विद्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 का समय लेकर टॉप किया और आज के दिन को अपने स्वर्णिम दिन में बदला है। और इस जीत के साथ भारत ने इस इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाड गोल्ड जीता और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा है। इसके अलावा जो पदक आया है वो है पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में, जहां कांस्य पदक जीता है धर्मवीर चौधरी, मनु थेक्किनलिल, विशाल टीके और जय कुमार की चौकड़ी ने। इनका समय रहा 3:01.61। इसके पहले 4x100 मीटर के मिक्स रिले में भी कांस्य पदक जीता भारतीय दल ने। गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41.06 सेकंड के समय के साथ, यानी 41:06 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसके साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इसके पहले हम बता चुके हैं हालांकि अपने श्रोताओं को, लेकिन एक बार फिर से जिनसे भी मिस हुआ हो हम बताना चाहेंगे कि एथलेटिक्स में 5000 मीटर के फाइनल में गुलबीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया और वहीं महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने भी कांस्य पदक जीता।
3: And Mudita, while today brought plenty of reasons to celebrate with brand new medals added to the tally, track and field gave us realistic look at just how the competition really is at the Asian Games. It was a session filled with strong efforts, personal achievements and even national records, even if the results did not end with a medal around the neck. Starting with the track events, Pooja lined up in the women's 800 meter final against some of the fastest runners on the continent. She stayed in the mix through the first lap and pushed hard all the way to the finish line, ultimately placing 7th overall with a time of 2:06.72. China's Wu Hongzhou took the gold medal in that race. Over in the men's 800 meter final, Mohammad Afzal was looking to repeat his success from the last Asian Games in Hangzhou, where he won a silver medal. He put up a brave fight against a very fast pack, but as they rounded the final bend, he couldn't keep pace with the leaders. Afzal crossed the line in the 8th place with a time of 1:48.27. Moving over to the field events, India had 2 athletes competing in the women's hammer throw final. Tanya Chaudhary came remarkably close to stepping onto the podium. She threw a distance of 65.35 meter, which was actually the best performance

0: performance of her entire career. That personal best earned her fourth place, leaving her just one spot short of the medal. Her teammate Anushka Yadav also put together a solid series of throws, finishing right behind her in the fifth place with a mark of 64.56 meter. Finally, the men's pole vault final turned out to be a mix of heartbreak and history. Kuldeep Kumar cleared the bar at 5.35 meter, but three missed attempts of 5.50 meter saw him finish in the 10th place. Meanwhile, 22-year-old Dev Meena had an incredible day on the runaway. He cleared 5.50 meter on his second attempt, breaking his own previous national record mudita of 5.46 meter that he set earlier this year. However, because of the overall level of the competition, the bar was set so high that even a brand new national record was only enough to secure 7th place in the final standings.
1: जी बिल्कुल. और अब जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं शानदार प्रदर्शन की, तो हम एक बार फिर से अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि आज भारत ने इसके पहले 3 मेडल और जीते थे. ट्रैप शूटिंग में महिलाओं ने 1 गोल, यानी नीरू ढांडा ने एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया. वहीं महिलाओं की ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय दल ने सिल्वर मेडल हासिल किया था. इसके अलावा बॉक्सिंग के 90 किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेलवाल ने कांस्य पदक पक्का कर लिया है.
0: And with these major updates coming in, Team India has now officially broken into the 10th position on the leaderboard, reaching a grand total of 52 medals.
1: तो इसके साथ ही अब हमको दीजिए इजाजत. दिन के आखिरी अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे फिर से ठीक 7:30 पर. नमस्कार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है अंदाज बयां। और आज मैं कुछ ऐसे गाने लेकर आई हूँ जिन गानों को फिल्मों में कुछ ऐसी जगह मिली है कि जहाँ पर या तो नायक या तो नायिका या तो जो भी किरदार है वो अपने दिल की बात बताने की एक कोशिश कर रहा है, या तो कोई राज खुल रहा है, राज कोई किसी को बताना चाहता है, एक कोशिश है उसके पीछे, या फिर अपने प्यार का इजहार कर रहा है, या फिर कोई मुश्किल आन पड़ी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ बताना है और गाना भी है। तो ये सब कैसे हुआ है, उस गाने में वो कैसे लिया गया है, वो ब्यूटी क्या है, ऐसे कुछ गाने मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये है किशोरदा की आवाज़ में दो रास्ते से।

अब इसके बाद का जो गाना मैंने चुना है वो भी पार्टी में ही है, और वो हीरोइन बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने हीरो से, और वो गुस्सा जिस तरह से जता रही है, उसका जो अंदाज़े बयां है वो इसमें आया है। अब शिकायत भी है, गुस्सा भी है, और तंज भी कसा जा रहा है, ऐसा इसके बाद वाला गाना मैंने चुना है। लेकिन पहले ये हो जाए प्रेम पुजारी से, और उसके बाद अनाड़ी से।

बर्थडे पार्टी में ये गाना है, और कई बार ऐसा ही हुआ है कि किसी ना किसी की बर्थडे पार्टी में ही ऐसे गाने लिए गए, या तो किसी ना किसी सेलिब्रेशन के दौर पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे ही ऐसी किसी पार्टी में ऐसे गाने लिए गए हैं। और अब इसके बाद कुछ ऐसा ही गाना है, सुन रहे हैं आप अंदाज़े बयां।

6:58 मिनट का समय है और कार्यक्रम अंदाज़े भैया को समेटने का समय हो चुका है। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद 7:10 पर मैं लेकर आऊंगी कार्यक्रम हम तुम। बस सुनते रहना है, आपको इंतजार करना है कुछ मिनटों का।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज ऑन EIR ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और शाम के ठीक 7:12 का समय है। कार्यक्रम हम तुम अब शुरू होने जा रहा है और आज हम तुम में आपको 60s और 70s के डुएट्स बताने हैं। लेट 50s से आप शुरू कर सकते हैं, लेट 50s देन 60s और 70s के डुएट्स आपको बताने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। आपको भेजने हैं आपकी पसंद के डुएट्स जो लेट 50s से लेकर 60s और 70s तक की फिल्मों के हों।

सुन रहे आप कार्यक्रम हम तुम और आपके फरमाइशों की यहाँ पे बारिश हो रही है। लेट 50s से लेकर 60s और 70s तक की जो फिल्में हैं उनमें से जो आपकी पसंद की ड्यूएट्स हैं वो आपको बताने हैं और इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप नंबर जरा मैं फिर एक बार बता दूं, 8657661071, 8657661071। और इसके बाद जो फरमाइश मैं पूरी करने जा रही हूँ वो है मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, चोरी चोरी का ये ड्यूएट सुनना चाहते हैं। और इसके बाद अरविंद कुलकर्णी और चेतन कुमार, आप दोनों ने जिस गाने को पसंद किया है मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना। और आप भी अगर इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने अब तक नहीं भेजा है आपका पसंदीदा गाना, ज़रूर भेज दीजिए। लेट 50s और 60s 70s तक के गाने जो ड्यूएट्स हैं आपको भेजने हैं जो आपकी पसंद के हैं।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Hello and welcome back to the early updates on Asian Games 2026. I am Prerna Sharma and I have with me Mudita here, and we have bring you back with the updates from the latest Asian Games. So starting with today's result on the archery range, Dhiraj and Neeraj Chauhan both delivered solid performances in the men's recurve individual event to advance to the quarterfinals, while Kumkum Anil Mohod also progressed to the quarterfinal stage in the women's recurve individual category. Over in today's boxing semi-finals, Parveen Hooda scored a convincing 5-0 victory in the women's 65kg division to reach the final, and Ankush Panghal fought through his men's 80kg bout to secure place in the gold medal match, while heavyweight Narendra Barwal fell in men's 90+kg semi-final to wrap up his campaign with a bronze medal. Over to you, Mudita.
2: जी प्रेरणा, और आज एथलेटिक्स में भारतीय अभियान समाप्त हो गया है। 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 कांस्य पदकों के साथ भारत ने कुल 24 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए हैं। आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि आज एथलेटिक्स में भारत ने 5 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक भी शामिल है। सबसे पहली सफलता आज हासिल की कुलवीर सिंह ने, जिन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में कांस्य पदक हासिल किया, और इसके साथ ही कुल 3 पदक हासिल किए उन्होंने इस एशियन गेम्स में। इसके बाद 4x100 मीटर मिक्स रिले में भारतीय एथलीट्स ने कांस्य पदक हासिल किया। गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41:06 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही, और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूजा सिंह ने महिलाओं की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता, और इसके बाद महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में आया स्वर्ण पदक। किरण एम पुवम्मा, प्राची और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 का समय लेकर टॉप किया, और इस जीत के साथ ही भारत ने इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाई गोल्ड जीता, और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा, और भारत ने अपना अभियान खत्म किया एक और मेडल के साथ, जो आया पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में। धर्मवीर चौधरी, मनु थेक्कनलिल, विशाल टीके, जय कुमार की चौकड़ी ने 3:01.61 का समय निकालकर कांस्य पदक हासिल किया।
1: And definitely it has been a very remarkable day for India, with 2 goals coming in alongside other prominent medals. And Mudita, looking ahead to tomorrow's archery action, India's compound archers take center stage in the 3 major semi-finals, with the women's team facing the Republic of Korea, followed by the mixed team taking on Thailand, and concluding as the men's team goes hand-to-hand with Republic of Korea. Meanwhile, tomorrow's boxing schedule features 3 high-stakes semi-final bouts, where Lovlina Borgen takes on Kazakhstan's Natalia in women's 75kg, and Kapil Pokharia meets Uzbekistan's Turabek in the men's 90kg semi-final.
2: कल की बात करने से पहले प्रेरणा, हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि टेनिस के मिश्रित युगल के पहले दौर में जो है मिक्स्ड डबल्स का मुकाबला जो चल रहा है, उसमें एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से हो रहा है। पहला सेट भारतीय जोड़ी 6-4 से हार चुकी है। दूसरे सेट में उम्मीदें अभी हमारी बरकरार हैं, वो शुरू होगा और उसके बाद हम देखते हैं। हालांकि टेनिस में आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि इसके पहले के दोनों एकल और दोनों डबल्स मुकाबले भारत ने जीते।
1: Coming to wrestling, Nisha faces North Korea's Park Soi-gum in the women's 68kg, which is going to be held tomorrow. And later, Sunil Kumar competes in the men's Greco-Roman 87kg wrestling.
2: और कल मुकाबला शूटिंग में भी देखने वाला होगा, क्योंकि 25 मीटर रैपिड फायर में पुरुषों में अनीश भानवाला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में आज की स्वर्ण पदक विजेता नीरू ढांडा उतरेंगी काइनन चेन्नई के साथ। तो इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे सुनना मत भूलिएगा डेली हाइलाइट्स, जिसमें हम आज के एशियन गेम्स के पूरे दिन का लेखा जोखा

0: आपको देंगे, भारतीय खिलाड़ियों की हर सफलता असफलता की कहानी आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही मुझे यानी मुदिता और मेरी साथी प्रेरणा शर्मा को दीजिए इजाजत। कल सुबह ठीक 9:30 बजे फिर से हम हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

7:36 का समय है। कार्यक्रम हम तुम चल रहा है और आज लेट 50s से लेकर 60s और 70s के दौर के जो डुएंट्स हैं वो आपको बताने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 और इसके बाद फरमाइश जो पूरी होने जा रही है वो है पुणे से राकेश माथुर जी की, गूंज उठी शहनाई का ये डुएट सुनना चाहते हैं। और उसके बाद मुकेश कश्यप जी आपके लिए, आपने कहा कि किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिए, तो इसके बाद बसंत बहार का गाना आ रहा है। और उसके बाद प्रणव शिंदे, राजेंद्र परमार, बस आपको इंतजार करना है, सुनते रहना है 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है हम तुम।

वैसे इस समय मैंने जो फरमाइश चुनी है वो है राजेंद्र परमा जी की, जो कह रही हैं कि चमका चमका सुबह का तारा, लेकिन फिलहाल जो है बारिश हो रही है और तारा नहीं बिजली चमक रही है। मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है, आप भी बता रहे हैं सब लोग, और ये गाने सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप भी कह रहे हैं कि गाने सुनकर ही बारिश को भी ऐसा लगा कि चलो गाने सुनने चलते हैं धरती पर, और बूंदें बरसने लगी। सो स्वीट ऑफ यू, जिसने भी ये हमें भेजा है, जिन्होंने भी ये बात कही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।

ये गाने हैं ही ऐसे। तो राजेंद्र परमा जी, इसके बाद आपकी फरमाइश है फिल्म सुबह का तारा, फिर उसके बाद प्रणव शिंदे ताजमहल का ड्यूएट सुनना चाहते हैं। चलिए पहले राजेंद्र परमा जी का ड्यूएट और उसके बाद प्रणव शिंदे आपका पसंद का ड्यूएट।

7:51 का समय है और समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है और इसके बाद मैं फरमाइश पूरी करने जा रही हूँ। सिर्फ एक ही फरमाइश पूरी हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, कोशिश करूँगी कि एक और फरमाइश भी पूरी करूँ, लेकिन फ़िलहाल ये जो फरमाइश है प्रसन्न चक्रवर्ती ने सुनना चाहा है, पेइंग गेस्ट का ये डुएट। वैसे आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिनकी फरमाइशें पूरी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर हो सकता है। फिलहाल ये गाना सुनवा दूँ आपको।

और इसके बाद जरा बता दूं कि जिनकी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाई हैं, जरा उनके नाम तो बता दूं। रजनीकांत पाटिल वाडवन, संजय दर्शन झारखंड से गोप, फिरोज सिगनपुरिया नवी मुंबई से धनंजय, अजय साखरे इंदौर से, उल्लासनगर से कल्पना राजू, पंकज मोहोड़ अमरावती से, मीना जी, दीपा पालकर, बलकरण वर्मा, हीरामणि वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, आकांक्षा, मनोज सिन्हा, दत्ता केदार पंढरपुर से, मेहर अरोरा दिग्दर्शन और कविता अंधेरी से, अंजू जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक पाटिल जी वर्ली से और तेलंगाना से शंकराचार्य, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब ने इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत, इतना मेलोडियस बनाया है, बहुत ज़्यादा आपने जो पसंद किया है इन गानों को, आपने पसंद किया है बिल्कुल, और इसीलिए ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा है आपको। सो मैं आपसे कहूँगी कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी फरमाइशें भेजने के लिए। और इसके बाद मुझे तो यहाँ से अब अलविदा कहने का समय हो चुका है, दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कीशा के साथ वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम रॉक विद चोक। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, बस आपको इंतजार करना है, सुनते रहना है 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर शुभांगी कहती है बस यहीं पर नमस्कार।

और संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC।

0: केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
4: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
5: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
6: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

0: के तहत हर साल 6000 रुपए मिल रहे हैं।
1: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6000 रुपए मिलता है।
0: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
2: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 क्लीन रोल

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की।

तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी तीन तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज।

0: और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में विमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
1: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we managed all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
2: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया। और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी, भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
3: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final,

0: Pankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Erwin Huda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
1: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है। नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गयी। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पुलसी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
3: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया। जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडी

0: चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भांबरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
2: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस टू सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। टू सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप their hopes alive by taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tie break to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
0: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
2: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
0: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम 6 स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्का टोचोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने 7वें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बवन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया, किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या बता रही हैं मुदिता।

0: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप? आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
3: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी

कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि ये खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वो चांदनी सबदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी सबदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। दोस्तों, कभी लफ्ज गजल के दिल को छू जाया करते हैं, कभी कोई धुन पुरानी यादों के दरवाजे खोल दिया करती है, और कभी किसी गजल का एक शेर दिल की वो बात कह जाता है जिसे हम खुद अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। गजल सिर्फ शेरों का सिलसिला नहीं है दोस्तों, बल्कि एहसासों जज्बात की एक खूबसूरत सी दुनिया है। इसमें मोहब्बत भी है, जुदाई भी, इंतजार भी, तन्हाई भी, और जिंदगी की हकीकतें भी शामिल हैं। आसपास का माहौल हो या दिल के एहसास व जज्बात, गजल हर चीज को लफ्जों का जामा पहनाने में माहिर है। गजल भी शय है अजब दिल नवाज कातिल का, गजल भी शय है अजब दिल नवाज कातिल का, कि जब भी सुनिए कलेजा निकल पड़े दिल का।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हैं आप। वक्त हो चला है 11:17, हिना मौज है आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल, महफिल सजी है गज़ल मौसिकी की और इस महफिल में बात हो रही है गज़ल की और गज़ल से मुतालिक हर उस एहसास, हर उस जज्बात की जिसको गज़ल अपने अंदर समो लेने की ताकत रखती है। दोस्तों, गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, लेकिन जब ये सारे अशार एक खूबसूरत तरन्नुम में ढलते हैं तो सुनने वाले के दिल पर एक अलग ही कैफियत तारी हो जाती है। गज़ल की खासियत यही है दोस्तों कि ये सीधा दिल पे असर करती है और दिल से बात करती है। कभी महबूब की याद बनकर आती है, कभी बीते हुए लम्हात की तस्वीर दिखाती है और कभी तन्हाई में किसी अपने की कमी का एहसास करा जाती है। कहते हैं कि जब मेरे होठों पे मेरी तिश्नगी रह जाएगी, तेरी आंखों में भी थोड़ी सी नमी रह जाएगी, सर फिरा झोंका हवा का तोड़ देगा शाख को

फूल बनने की तमन्ना में कली रह जाएगी। खत्म हो जाएगा जिस दिन भी तुम्हारा इंतजार, घर के दरवाजे पे दस्तक चीखती रह जाएगी। क्या खबर थी आएगा एक रोज ऐसा वक्त भी, क्या खबर थी आएगा एक रोज ऐसा वक्त भी, मेरी गोयाई तेरा मुंह देखती रह जाएगी। वक्त रुखसत आएगा और खत्म होगा ये सफर, वक्त रुखसत आएगा और खत्म होगा ये सफर, मेरे दिल की बात मेरे दिल में ही रह जाएगी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

11:26 प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना लफ्ज़ मौसिकी का रंगे महफिल। महफिल सजी हुई है लफ्ज़ों की और लफ्ज़ों के साथ मौसिकी की यानी गज़लों की। गज़लें वो खूबसूरत एहसास, वो जज्बात और वो एहसासात जो हमारे साथ शेयर करती हैं, जिनको हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कहते हैं दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज़ रही, मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही। शहर में जब भी चले ठंडी हवा के झोंके, तपते सहरा की तबीयत बड़ी नासाज रही। आईने टूट गए अक्स की सच्चाई पर, और सच्चाई हमेशा की तरह राज रही। एक नए मोड़ पे उसने भी मुझे छोड़ दिया, एक नए मोड़ पे उसने भी मुझे छोड़ दिया, जिसकी आवाज़ में शामिल मेरी आवाज़ रही।

आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जी हाँ, जोर गजल की बात हो रही है, महफिल है रंग की, यानी रंग महफिल। 11:36 एक सेकंड हुआ है। हिना मौज है आपके साथ इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, आज आपकी हम सफ़र। दोस्तों, कभी गजल जो है महबूब की याद बनकर हमारे दिलो जहन में रक्स करती है, कभी बीते हुए लम्हात की तस्वीर दिखाती है और कभी तन्हाई में किसी अपने की कमी का एहसास भी करा जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि किसी गज़ल को सुनते हैं तो अचानक लगता है कि अरे, ये तो मेरे दिल ही की बात है। शायद यही गज़ल की सबसे बड़ी खसूसियात है। मोहब्बत की बात हो और गज़ल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा चलती आई हैं और चलती रहेंगी। गज़ल में मोहब्बत कभी इजहार बनकर आती है, कभी खामोशी बनकर और कभी इंतज़ार बनकर। कभी आशिक महबूब से मिलने की आरजू करता है और कभी उसी की यादों के सहारे अपनी तन्हाई काट लेता है।

दोस्तों, कभी कभी एहसास होता है कि गजल सिर्फ मोहब्बत तक ही तो महदूद नहीं है, क्योंकि गजल में बहुत सारी और ऐसी जिंदगी और फलसफे से मुतालिक चीज़ें हैं जिनको एक शायर अपने लफ्ज़ों में पिरो कर हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि गज़ल सिर्फ मोहब्बत तक ही महदूद नहीं है, इसमें ज़िंदगी के फ़लसफ़े भी हैं, रिश्तों की पेचीदगियाँ भी हैं, समाज की तस्वीर भी है और इंसान के अंदर चलने वाली कैफियत का बयान भी मौजूद है। यही वजह है कि गज़ल हर दौर में अपनी जगह बनाए हुए है। दोस्तों, वक्त बदला, मौसिकी बदली, सुनने का अंदाज़ भी बदला, लेकिन गज़ल की कशिश आज भी बरकरार है। आज भी जब कोई धीमी आवाज़ में गज़ल गाता है तो लगता है जैसे शोर भरी दुनिया कुछ देर के लिए खामोश हो गई हो और सिर्फ एहसास बोल रहे हों।

दोस्तों आपको नहीं लगता कि गजल सुनना दरअसल सिर्फ मौसिकी से लुत्फंदोज होना नहीं होता, ये कैफियत से गुजरना है। कभी मुस्कुराने की कैफियत, कभी उदास होने की, तो कभी किसी को याद करने की, और कभी खुद से मिलने की कैफियत। इस खूबसूरत सफ़र में जिसको हम गज़ल का सफ़र कहते हैं, हम भी कुछ पल के लिए रोज़मर्रा की दौड़ धूप भाग दौड़ इन सब चीज़ों से हटकर जब सुकून के दो पल हासिल करते हैं तो यादों की किताब ऐसा लगता है कि खुल जाती है और गज़ल सुनते ही लगता है कि उस किताब के सफ़े हम पलटने लगे हों।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हैं आप हिना मौज के साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। और इस खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हुए बस यही कहना चाहूँगी कि अशआर वो तो सब जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत तुमको सुनाने के लिए हैं। ऐसे अशआर ऐसे शेर जो हम किसी पर्टिकुलर बंदे को सुनाने के लिए रखते हैं और लगता है कि हाँ उसी को सुनाना है, तो उस इंसान के लिए जब आप कुछ मुंतखब करते हैं, कुछ इंतखाब करते हैं, तो फिर कुछ अलग ही मामलात हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए कहना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। ऐसे एहसास व जज्बात तब उमड़ते हैं जब आपके जहन में कोई एक इंसान ऐसा हो जिसके साथ आप हम कदम हो, हम सफ़र हो, और आपकी ज़िंदगी का ऐसा मामला हो उसके साथ जिसको लोग मोहब्बत कहा करते हैं, इश्क कहा करते हैं, जिसने तेरी याद में सजदे किए थे खाक पर, उसके कदमों के निशा पाए गए अल्फाज पर। ऐसे अल्फाज, ऐसे खूबसूरत एहसास व जज्बात जब गज़ल का मफहूम बनते हैं तो दिलो जहन में उनका गश्त करना लाजमी हो जाता है।

जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि अपने जहन में मोहब्बत को यूं ही बरकरार रखिए। हमसफ़र की तलाश मोहब्बत के पैराए में कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ खुशियों का बसेरा रहे। इसी उम्मीद, इसी ख्वाहिश और इसी दुआ के साथ हिना मौज आप सब से रुख्सत तलब करती है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।

FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुनिए इस समय घंटे की मुख्य समाचार। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू स्मारक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर 10वीं संयुक्त समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। भूमि संसाधन विभाग ने कल नई दिल्ली में नदियों और पुनर्जीवन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में 65 राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। नागालैंड में कोहिमा पुलिस के ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। लद्दाख में नई कृषि पहल की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में उगाए गए लिलियम फूलों की पहल व्यावसायिक एयर कार्गो खेप में खाना किया। एशियाई खेलों में भारत ने कल 2 स्वर्णिम सहित 8 पदक जीते, 6 स्वर्णिम, 21 रजत और 26 कांस्य के सहित कुल पदकों की संख्या 53 हुई। और पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये FM रेनबो पर थे आज अब तक के समाचार।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए

ये निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर 10वीं संयुक्त समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। भूमि संसाधन विभाग ने कल नई दिल्ली में नदियों और पुनर्जीवन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षक 2026 के अंतर्गत दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षक संस्थानों में पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों की खारिज किया। लद्दाख में नई कृषि पहल की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में उगाए गए लीलियम फूलों की पहली व्यावसायिक एयर कार्गो खेप को खाना किया। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ में और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। एशियाई खेलों में भारत ने कल 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। 6 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य के साथ 53 पदकों की संख्या हुई। और पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय श्रृंखला का आज दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे आज इस घंटे के समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो

नए तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: Ya si Terry boleh.
1: Aye, aye.
0: तेरी तेरी ची नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुनिए इस घंटे की मुख्य समाचार। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू स्मारक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर 10वीं संयुक्त समिति की बैठक हुई। पश्चिम मामले में सचिव सीबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा कि परमाणु मुक्त विश्व के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्कियों के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर आयोजित करेगा। एशियाई खेलों में भारत ने कल 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते, 6 स्वर्ण, 21 रजत और 6 कांस्य के सहित कुल पदकों की संख्या 53 हुई। और पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज ने के बीच 3 मैच की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम।

फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

0: कोई मॉडल बुरा ना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा कि परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर

संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर आयोजित करेगा। और अब कुछ खेल समाचार। एशियाई खेलों में भारत ने कल 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। 6 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य के सहित कुल पदकों की संख्या 53 हुई। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। और मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के आंतरिक क्षेत्रों केरला माहे कराईकलाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: जी हाँ, श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में हो रहा है समय रात्रि के 3:03 और 3 सेकंड्स। और लीजिए, अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कुछ खूबसूरत से प्यारे से गीत आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगे। तो लीजिए, आनंद लीजिए नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

श्रोता आनंद ले रहे थे प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा कि परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर आयोजित करेगा। और अब खेल समाचार। एशियाई खेलों में भारत ने कल 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। 6 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य के सहित कुल पदकों की संख्या 53 हुई। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। और मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के आंतरिक क्षेत्रों, केरला, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। तो ये थे एफएम रेनबो पर

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो रहा है सुबह के 4:40 और लीजिए श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अलवास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: हर सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.